एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी भद्रवाह है। सावन आज इतवार है। शक्सवत 1948 के ज्येष्ठ महीने की 31 तारीख ब मुताबिक 21 जून 2026 ईस्वी। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के ठीक 6:26 और 37 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की नशरियात का आगाज़ होता है।

FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। सामिन, थोड़ी ही देर बाद आज योगा का बैनुल अक्वामी दिन कौमी सतह पर मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे मुल्क में हम आहंगी के साथ बड़े पैमाने पर योगा के मुजाहरे की नुमाइश की जाएगी, जिसकी क़यादत इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म हैं जनाब नरेंद्र मोदी रेड रोड कोलकाता मगरबी बंगाल से करेंगे, जिसे बराह रास्त आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। सामिन, रिले का इंतज़ार कीजिए।

0: गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people.

0: from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here, and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए. यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे. इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग. बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं. और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है. पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं, और यहां पर अब संबोधन हो रहा है.
0: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष.
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ.
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार. आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है. इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है. इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया. हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया. 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया. कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया. आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है. इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधान

0: এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বলাব না, ইতিহাস আমরা জানি। আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাব বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026 আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম। ভারত মাতা কি।
1: That was the Honourable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honourable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honourable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais, where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal Sri R. N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन
वी वेर एट 20. आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर एनर्जेटिक एट 50 देन वी वेर एट 30. आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर रेजिस्टेंट टू लाइफस्टाइल डिसीज एट 70 देन वी वेर एट 50. दिस इज वेर योगा कैन हेल्प अस. इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल. इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. Sathiyo, Gita mein Bhagwan Krishna ne yoga ke vishay mein kaha hai, yukta ahar viharasya yukta cheshtasya karmasu युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः. अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है. ये संतुलन ही योग का आधार है. यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है. लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं. बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको. योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है. योग हमें डू और डोंट सिखाता है. और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है. साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता. योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है. इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है. यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध. ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है. इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है. इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल

0: के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जनसमूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honourable Prime Minister will be shortly arriving.

0: arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
1: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है. ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं. इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है. हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं.
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था में आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए.
1: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं. पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है. योग साधकों के बीच
0: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
1: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की. विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है. और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं.
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है. मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है.
1: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं. और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं.
1: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है. साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है.
1: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया. हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है. ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से.
1: जी, और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं.

0: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
1: Yes, actually asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं. तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है. मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहां से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं. तो
2: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में.
1: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना. अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं. इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना. जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है. इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं. तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं. किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना. हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर. जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है. फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटैलिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है. आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं. इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है. और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं. हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है. आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है.
2: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है. प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं.
3: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं.
2: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में. और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है. और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं. मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं.
3: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चलाए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है.
2: जी,
3: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं. वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि.
2: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना. योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है.
1: बहुत बढ़िया. एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे

0: सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी।
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
1: जी।
0: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है
1: जी।
0: आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी।
0: यस
1: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है। और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
1: जी।
2: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
3: यस एंड एज यू वर मेंशनिंग नीलम दैट टुडे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर हेल्दी एजिंग एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेंशनड इन हिज स्पीच दैट इन द 1920s परमहंस योगानंद सेट अप द योगा सेंटर इन कोलकाता एंड ऑल्सो एट अदर प्लेसेस And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और

0: हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और
1: निरीक्षण
0: प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
1: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he's interacting with them, and he's just pepping them up. This shows
0: जी
1: that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग-अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं, निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो
0: जी
2: एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है,
0: जी
2: तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है।
0: जी और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में। यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए। बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just, as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और
1: and
0: अब
1: now
0: यहां
1: about this asana,
0: अभ्यास किया जा रहा है शशकासन का, खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद

0: शशकासन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहां पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा। सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए उत्तान मंडुकासन। प्रतिमा जी, इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
1: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
0: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा। तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी,
1: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है, तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
1: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है।
0: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर। एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स।
1: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है, और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ है, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है।
0: जी,
1: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये।
0: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है, हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा?
1: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
0: जी गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं, और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं, बहुत ही सुंदर।
0: जी,
2: बहुत ही
0: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
1: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
0: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर। और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
0: जी,
1: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्तासन समूह के आसनों में से किया जाने

0: वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु
1: जी
0: विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन
1: जी
0: सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
1: जी
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप
1: जी
2: कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखरा बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है कि हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाए, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की जिंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: डॉक्टर प्रतिमा, नाउ आई थिंक वी आर सीइंग द कपालभाति, सो यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपाल भाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस, ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरैक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है, तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग

0: मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहां पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरियेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद, क्यों? क्योंकि ये हमिंग भी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है, डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
0: और बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है
1: जी,
0: तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
0: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
1: जी,
0: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
1: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इंफॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज

0: पूरी दुनिया में है, आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें मैंने, मेरी खुद की मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है।
1: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना, शांति मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों
1: पर, जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
2: और धीरे धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूं जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
3: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi योग में होंगे। हम जानते हैं कि भारत में तो सूर्योदय जब हो रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे। और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन, यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
3: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड। एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga.

0: As it promotes not only healthy lifestyle but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
1: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनसपटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं, मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है, फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है, फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूंगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
2: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहां पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
0: यस एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशनड एंड एज यू आल्सो मेंशनड नीलम जी दैट द टुडे वी सॉ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लीड द नेशन इन परफॉर्मिंग योगासना एट द रेड रोड Kolkata, but at the same time also yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
2: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल थल नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनके जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है, तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी, कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है, और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा, और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे।
5: FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी भदरवा से आपसे मुखातिब हैं। सामने अब से थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर उर्दू खबरनामा रिले करेंगे। समय रिले का इंतजार कीजिए।

0: तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक

0: अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्मचेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस

0: भी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
4: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: स्थान भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्कों के 14 शहरों में मुनाकिद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में बैठेंगे। इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में मुनाकिद कराए जा रहे हैं। इम्तिहान से कबल इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सभी निजाम, जैमर्स, CCTV, तलाशी लेने वाले अमले और बायोमेट्रिक की तस्दीक करने के लिए कल कौमी पैमाने पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया था। NTA ने कहा है कि वो साफ, शफाफ और खुशुसलूबी से इम्तिहान मुनाकिद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नीट के इम्तिहान को साफ और शफाफ और खुश उसलूबी से कराने के लिए मुशाहिदीन, कोऑर्डिनेटर्स, पुलिस फोर्सेज और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अमले को तैनात किया गया है। साफ, शफाफ और मुनसिफाना इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए एक कसीर सतही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैनात किया गया है। इसमें CCTV, निगरानी कैमरे, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक, सील बंद प्रोटोकॉल के तहत मखसूस मकाम पर खुफिया इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान को महफूज तरीके से हवाले करने और इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान की नकल व हमल के लिए GPS से लैस गाड़ियां शामिल हैं। NTA गलत मालूमात को रोकने, बेजाबतगी खत्म करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निगरानी भी कर रही है। नीट के इम्तिहान आज 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक मुनक़िद होंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 8.6 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की खेप के साथ भारतीय परचम बरदार खाम तेल के 3 टैंकर्स ने कल आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब वो भारत आ रहे हैं। इन टैंकरों में भारतीय अमले के 94 अफराद सवार हैं। इन टैंकरों के नाम में देश वैभव, देश विभोर और सेमर हेराल्ड हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सोनोवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फैसला कुन कयादत में हुकूमत भारतीय बहरी मफादात के तहफ्फुज़ को सबसे ज्यादा तरजीह देने पर काम कर रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत भारतीय मल्लाहों और तवानाई की लाइफ लाइन्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की जमानत के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रही है। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 10 आवेजी फिल्मों, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन और AI सिनेमा का ये 2 साला फेस्टिवल 15 जून को शुरू हुआ था और आज रात एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सिनेमा के शानदार रंगों से भरे 5 दिनों के बाद मिर 2026 आज इख्तिताम पजीर होगा। ताहम इख्तितामी तकरीब से पहले फिल्म शायकीन के पास मुख्तलिफ सेक्शंस में प्रिज्म, बेस्ट ऑफ फेस्ट, नेशनल कंपटीशन, मोजेक और इंडिया लाइव्स एंड लैंडस्केप्स के तहत गैर फिक्शन कहानियों की ताकत का तजर्बा करने का एक और दिन होगा। मिफ के आखिरी दिन की अहम तरीन पेशकश में से एक वी शांताराम दी पाइनियरिंग स्पिरिट की स्क्रीनिंग होगी, जो इस लेजेंडरी फिल्म साज की 125वीं सालगिरह के मौके पर दिखाई जा रही है। आशा मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में मुनाकिद होने वाली इख्तितामी तकरीब में बैनर अक्वामी और कौमी मुकाबलों के जुमर में बेहतरीन फिल्मों को 18 अवार्ड दिए जाएंगे। मुंबई से अंकित आपटे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में और बहुत तेज बारिश के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने जुमेरात तक असम, मेघालय में इक्का दुक्का मकामात पर भी तेज बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में आज डिम्बोला में खेली जाने वाली 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अपने साबिका मैच में शिकस्त को भुलाते हुए इंडिया ए श्रीलंका ए को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने आज योग के आलमी दिन से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रसाद की सिलसिले में शह सुर्खी है, आयोग के बैन अक्वामी दिन के मौके पर आयुष की वजारत ने लोगों से बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की। अखबार इंकलाब की शसुर्खी है, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नीट इम्तिहान, शफाफ और नकल से पाक, इम्तिहान के लिए मरकज और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी तैयारियां। अखबारात ने उड़ीसा में वजीर आजम के हाथों 47,600 करोड़ रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखे जाने से मुतल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की कयादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागरी, INS

0: संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतारकर पहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लगा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी के भदरवाह स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं। 8:45 हुए हैं। सामिन अयब सुनते हैं बैन अल-अक्वामी योम योगा के मौके पर सुरभि गुप्ता की गुफ्तगू।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का ये विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपकी अपनी सुरभि गुप्ता और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी स्वस्थ और संतुलित बनाता है। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और उसका महत्व। दोस्तों, योग क्या है? योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। अर्थात योग वह माध्यम है जो शरीर मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोता है। दोस्तों, योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि ये एक जीवन शैली है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर संतुलन बनाए रखें और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांति में रह सकें। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। ये दिन ऊर्जा और चेतना का प्रतीक माना जाता है। साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा, जिसे 177 देशों का समर्थन मिला। इसके बाद ही 21 जून 2015 को पहली बार पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं योग दिवस के महत्व की। योग के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं। योग करने से शरीर लचीला बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार बेहतर होता है। योग केवल शरीर ही नहीं मन को भी स्वस्थ करता है, तनाव और चिंता कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग एक संतुलन का साधन है। श्रोताओं, योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम यानी सांसों का नियंत्रण। दोस्तों, जब हम सांसों को नियंत्रण करते हैं तो हम अपने मन को भी नियंत्रण कर सकते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन, ये हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और हमारी सोच को भी स्पष्ट कर बनाता है। अब हम बात करते हैं कुछ सरल योगासनों की। तारासन, भुजंगासन, वृक्षासन, पद्मासन, इन आसनों को नियमित रूप से करने से हम स्वस्थ और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। दोस्तों, आज का जीवन तेज तनावपूर्ण हो गया है। मोबाइल, कंप्यूटर और भाग दौड़ ने हमें शारीरिक रूप से निष्क्रिय बना दिया है। ऐसे में योग हमें तनाव से मुक्ति देता है, जीवन में अनुशासन लाता है, हमें प्रकृति के करीब लाता है। योग हमें सिखाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में लोग योग को अपना रहे हैं। जैसे कि अमेरिका, यूरोप, जापान, हर जगह योग केंद्र खुल रहे हैं। ये भारत की प्राचीन परंपरा का विश्व को दिया गया अनमोल उपहार है। योग हमें केवल स्वस्थ ही नहीं बनाता बल्कि ये हमें जीवन के मूल्यों से भी जोड़ता है। जैसे कि हम अनुशासन में रहना सीखते हैं, संयम में रहना सीखते हैं, सकारात्मकता आती है, आत्मनियंत्रण होते हैं हम। योग हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं है बल्कि हमारे

0: हमारे भीतर है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जो कि 21 जून 2026 को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय है स्वस्थ, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग, योगा फॉर हेल्थ, नॉलेज एंड वर्ल्ड पीस। ये थीम मानसिक ज्ञान, शारीरिक स्वस्थ तथा वैश्विक सद्भाव के लिए योग के समग्र दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य है मधुमेह यानी डायबिटीज, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे यानी ओबेसिटी जैसी गैर संक्रामक बीमारियों को कम करने और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम 13 मार्च 2026 से विज्ञान भवन नई दिल्ली में शुरू हो चुका है, जिसमें योग महोत्सव 2026 के तहत देश भर में आयोजन किए जा रहे हैं। इस थीम की विशेषता ये है कि इस समारोह में विशेष रूप से 10 योग विधियों को उजागर किया जाएगा, जो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रबंधक में सहायक हैं। प्रिय श्रोताओं, योग केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हर दिन का अभ्यास होना चाहिए। योग केवल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए नहीं, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर ही हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कुछ सरल योगासनों द्वारा हम स्वस्थ से जुड़ी अनेक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ताड़ासन शरीर को सीधा और संतुलित बनाता है, भुजंगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, वृक्षासन संतुलन और एकाग्रता बढ़ाता है, पद्मासन ध्यान के लिए सर्वोत्तम आसन है, भ्रामरी प्राणायाम, इस प्राणायाम को करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, अनुलोम विलोम, इस प्राणायाम को करने से उच्च रक्तचाप नियंत्रण रहता है। दोस्तों, इन आसनों को नियमित रूप से करने से हम स्वस्थ और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे घर में, चाहे परिवार के लोग हैं, चाहे बच्चे, जवान या बूढ़े, सबको योग का महत्व बताते हुए योग करने के लिए प्रोत्साहित करें। फिर उसके साथ साथ हमारे आस पड़ोस में रहने वालों को भी योग के लाभ बताते हुए योग करने की प्रेरणा दें। खुद को बदलो, देश बदलेगा जब हर नागरिक रोज योग करेगा। रोज करो योग, दूर रहे रोग, योग करें निरोग रहें, योग को बनाएं अपनी आदत, यही है खुशहाल जीवन की इबादत। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम संकल्प लें कि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। योग धर्म नहीं, विज्ञान है, ये शरीर मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। योग वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, लो उतनी ही उज्जवल होगी। स्वस्थ रहें, खुश रहें और योग को अपनाएं। इसी संदेश के साथ मैं सुरभि गुप्ता आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार, जय हिंद।
1: सामिंग, आप सुन रहे थे योम योगा की अहमियत के बारे में सुरभि गुप्ता की गुफ्तगु। हम आकाशवाणी भद्रा से आपसे मुखातिब हैं 101 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर। आइए अब सुनते हैं चंद फिल्मी नगमे। तो पहले समात फरमाए सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म प्रेम रोग का गीत। गीतकार है नरेंद्र शर्मा और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

सावन गीता आपने सुना फिल्म प्रेम रोग से, आइए अब सुनते हैं खुद्दार फिल्म का नगमा। नगमा नगार हैं आनंद बख्शी और आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

समझना पसंद रहे थे खुददार फिल्म कनक माँ। आवाज़ थी अलका याग्निक और कुमार सानू की। FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी के भद्रवाह स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं। 9:05 हो चुके हैं। अब पेश है रोज़गार खबरनामा। SSC यानी सरस्ता सीमा बल की एक इतला के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से SSA यानी सीनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट्स और UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क्स की असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 227 है, जिसमें सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की असामियों के लिए 76 असामियां दरकार हैं। आर्मी फोर्सेस क्लरिकल सर्विसेज के लिए 42 असामियां, रेलवे बोर्ड सेक्रेटरेट्स क्लरिकल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए 19 असामियां, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल के लिए 24 असामियां, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए 6 असामियां, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए 12 असामियां, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लिए 4 असामियां, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए 8 असामियां, डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस स्टेट्स के लिए 8 असामियां और ऑफिस डेवलपमेंट कमीशन के लिए 28 असामियां दरकार हैं। तालीमी काबिलियत में उम्मीदवार के पास किसी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री का होना लाजमी है और इसके साथ साथ उम्मीदवार का रेलिवेंट फील्ड में 3 साल का तजुर्बा होना भी ज़रूरी है। उम्र की हद में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की 18 से 32 साल रखी गई है, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में 5 साल की छूट और डिफेंस पर्सनल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में 3 से 8 साल की छूट रखी गई है। उम्मीदवारों को दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 26 जून 2026 मुकर्रर है। मज़ीद जानकारी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है http://ssc.gov.in। समय वेबसाइट एक बार फिर से दोहराते हैं, http://ssc.gov.in। ये था रोज़गार खबरनामा। FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। अब पेश है अब से आगे रात 10 बजे तक रिले व नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 9:20 पर डोगरी में खबरें।

शाम ठीक 6 बजे हिंदी और 6:05 पर अंग्रेजी में खबरें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे और ठीक 6:15 पर डोगरी में खबरें व तबसरा आकाशवाणी जम्मू से रिले किया जाएगा।

शाम 7 बज कर 10 मिनट पर कौमी खबर स्थान टेलीविजन आकाशवाणी कौमत के 12 साल मुकम्मल पाने के मौका पर मुख्तलिफ मौसम पर मबनी खसूसी सिलसिलावार प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली से।

शाम 7:45 मिनट पर उर्दू में खबरें और इसके फौरन बाद वादी की आवाज़ प्रोग्राम हम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले करेंगे।

हम आकाशवाणी भद्रा से आपसे मुखातिब है 101 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर। आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना के लिए गीत आवाज़ और बोल है कैलाश खेर की।

0: एह् आकाशवाणी जम्मू ऐ. बड्डलै खबरें च तुंदा सोआगत. पैह्ले खास खास खबरें कन्नै में जगमोहन शर्मा. समूलची दुनिया च अज्ज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा'रदा ऐ. जम्मू च मुक्ख समारोह दी अगुवाई केंद्री मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह होरें कीती. श्रीनगर च LG मनोज सिन्हा होरें कार्यक्रम दा नेतृत्व कीता. नीट UG दा परतियै मतेहान अज्ज लैता जा'रदा ऐ. सुरक्षा दे निग्गर बंदोबस्त. जम्मू जिले च 27 परीक्षा केंद्र बनाए गेदे न. जम्मू कश्मीर पुलसा गी उपरोतली दुए ब'रे बी पासपोर्ट सेवा उत्कृष्टता सम्मान हासल होआ ऐ. PM किसान दी ताजा किश्त च जम्मू प्रांता दे 4,18,000 करसानें गी 89,63,00,000 रपे दी रकम हासल होई ऐ. ते मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर च कल्लै तोड़ी बदलोखड़े मौसम, टामी टामी थाहरें बरखा ते गर्ज लिश्क कन्नै अंधी झक्खड़ दे आसार दस्से न. खबरें दी तफसील कन्नै कुणाल श्रीवत्स.
1: देश दुनिया च अज्ज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा'रदा ऐ. इस बरे इस ध्याड़े दा विशे सार ऐ बद्दी उमर च योग दा महत्व. केंद्री मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह होरें 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दे मौके पर जम्मू च योग दिवस समारोह दी अगुवाई कीती ते शारीरिक ते मानसिक सेहत लेई योग दे महत्व गी बढ़ावा देने आस्तै बक्ख बक्ख खेत्तरें दी नुमाइंदगी करने आले लोकें कन्नै रलियै कार्यक्रम च हिस्सा लैता. जम्मू खित्ते च मुक्ख क्षेत्रीय स्तर दा कार्यक्रम सरकारी महिला कॉलेज गांधीनगर च आयोजित कीता गेआ, जित्थें डॉ. जितेंद्र सिंह होरें मुक्ख परौह्ने दे तौर पर हिस्सा लैता. उनें बक्ख बक्ख योग मुद्राएं ते क्रियाएं दा प्रदर्शन करने च प्रतिभागियें दी अगुवाई कीती. इस कार्यक्रम च विद्यार्थियें, अधिकारियें, पेशेवरें ते योग उत्साहियें सने बड़ी मती गिनतरी च लोकें हिस्सा लैता ते सिखलाई हासल माहिरें दे मार्गदर्शन च योग अभ्यास कीता. इस मौके पर बोलते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह होरें आखिया,
2: जैसा कि आप जानते हैं इस वर्ष योग की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग. और आपको स्मरण होगा कि हम मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष का उत्सव भी मना रहे हैं, तो योग दिवस को भी मनाते हुए 12 ही वर्ष हुए. और ये कोई साधारण संयोग नहीं. हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी की ओर से संयुक्त राष्ट्र में 21 जून की यह तिथि तय की, जो द लॉन्गेस्ट डे भी माना जाता है पृथ्वी के इस भाग में. और योग फॉर हेल्दी एजिंग का इसलिए भी महत्व बनता है कि भारतवर्ष में लाइफ स्पैन बढ़ रहा है. जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए अपना स्वास्थ्य कायम रखे.
1: तुआई श्रीनगर च मुख्य कार्यक्रम डल झील दे कंडे स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC च लोआया गया, जित्थें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें इस समारोह की अगुवाई कीती. योग दे फायदे पर लो पांदे होई किश प्रतिभागियें आख्या,
3: योगा से बहुत फायदा है. योगा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. हम स्कूल में रोज करते हैं. योगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. योगा से जितने भी इंसान के अंदरूनी डिजीज है वो बहुत कम है. ऊपर से इंसान बहुत हेल्दी रहता है, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है.
4: मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ ये योगा. इसके बहुत बेनिफिट है, लंग्स साफ हो जाते हैं इससे और नशे से दूर रहते हैं. मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि योगा कीजिए, बस नशे से दूर रहे.
5: योगा से हमें बहुत फायदे मिल रहे हैं, क्योंकि पहली बात यह है कि नशे से दूर रहते हैं. जो नशे से दूर रहता है वो हर कुछ कर सकता है और योगा सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लंग साफ होता है.
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज मनाए जा रहे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोकें की मुबारकबाद दीती है. अपने स्नेह च उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के बसनीकें गी योग कार्यक्रम च सक्रियता कने हिस्सा लेने ते सेहतमंद जीवन शैली अपनाने की अपील की है. इस बरे दे विषय बद्दी उम्र च योग दा महत्व दा जिक्र करदे होई उन्हें योग की भारत की प्राचीन विरासत दा एक अनमुल्ला तोहफा दस्या, जेड़ा शारीरिक, मानसिक ते आध्यात्मिक खुशहाली गी बढ़ावा दिंदा है. उन्हें आख्या जे योग आधुनिक सेहत सरबंधी चुनौतियों खिलाफ मेद जगांदा है. उन्हें लोकें गी सेहतमंद जीवन जीने लई अपने आपे गी समर्पित करने दा आह्वान भी कीता. 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दे सिलसिले च आकाशवाणी दा क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू अज दपैहरी 12 बजे एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने जा'रदा है, जेदा विषय है योगा फॉर हेल्थी एजिंग, यानी बद्दी उम्र च योग दा महत्व. कार्यक्रम च साढ़े परौने होंगन योग गुरु सुरेश गुप्ता, जेड़े इस विषय दे बक्ख बक्ख पहलुएं पर लो पांगन. इंदे कन्ने गल्लबात करंगन साढ़ी न्यूज एंकर श्रुति खजूरिया.
6: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं यही कहूंगा कि
1: जम्मू जिले च लोड़ते सुरक्षा ते प्रशासनिक बंदोबस्त करी लैते गए. इम्तिहान दोपहरी ले 2 बजे शुरू होइए, 5 बजे तोड़ी चलोग. अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अनसुईया जम्वाल होरें दस्सिया जे जिले भरै च 27 मतेहान केन्द्र कायम कीते गेदे न ते सब्बे तैयारियां राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA दी मानक संचालन प्रक्रियाएं मुताबक गै कीतियां गेदियां न। उनें आखिया जे लोड़चदी गिनतरी च पुलिस तैनाती, सुरक्षा जांच, विद्यार्थियों की तलाशी, ट्रैफिक प्रबंधन ते रस्ते च जरूरी बदलाव का बंदोबस्त किया गया है। मेदवारें दे इम्तिहान केंद्रें च सुचारू रूप कन्नै दाखल होने ते बाहर निकलने ते इम्तिहान गी कुसै भी परेशानी दे बगैर करवाने आस्ते हर केंद्र पर विशेष टीमें गी तैनात कीता गेदा है। उन्हें आख्या
7: हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में टोटल 27 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। हर एग्जामिनेशन सेंटर के पास टीम्स रहेंगी जो फैसिलिटेट करेंगी कि बच्चों की एंट्री एग्जिट प्रॉपरली हो। तो हमारे प्रशासन की यही कोशिश रहेगी कि बिना किसी असुविधा के बच्चे आराम से जाकर अपना एग्जाम दे सके। प्रत्येक एग्जामिनेशन सेंटर में आज सुबह से मॉक ड्रिल हुई है। मैं बच्चों को भी यही कहना चाहूंगी कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। इस समय आप किसी भी सोशल मीडिया साइट को जहां अगर कहीं र्यूमर्स हैं उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल ना दें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर पर आप उस पर संपर्क करें, NTA से कोऑर्डिनेट करें।
8: एक खबर साड़ी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। इसके अलावा तुसे खबर आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकते हो।
1: एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुनारदे ओ। बाकी दी खबरें कन्ने जगमोहन शर्मा।
0: जम्मू कश्मीर पुलसा की उपरोतले दुए बरे पासपोर्ट सेवा 2025-26 आस्तै राज्य पुलिस लई संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार कन्ने सम्मानित किया गया। एह इनाम केंद्रीय विदेश मंत्री होरें नमीं दिल्ली च पासपोर्ट सेवा दिवस समारोह दौरान दिता। इस मान्यता कन्ने पासपोर्ट की तौले तस्दीक, नागरिक केंद्रित सेवा उपलब्ध करवाने ते सुशासन च बल की उत्कृष्टता उजागर होंदी है। अप्रैल 2025 ते मार्च 2026 बश्कार जम्मू कश्मीर पुलसै 1,64,000 शा मते पासपोर्ट सरबंधी सेवाएं च कार्यकुशलता का शानदार प्रदर्शन किया है। पीएम किसान योजना तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे आसेआ देसा दे करसानें गी इस योजना दी इक होर किश्त जारी करने दे कार्यक्रम दा जम्मू दे बाबा जित्तो किसान केंद्र च आयोजित समारोह च सिद्धा प्रसारण कीता गया। जम्मू पच्छम थमां विधायक अरविंद गुप्ता इस मौके पर मुक्ख परौह्ने हे। महकमा राई बाई जम्मू दे निदेशक अनिल गुप्ता होरें इस मौके जानकारी दित्ती जे कल जारी इस किश्त दा लाह जम्मू प्रांता दे 4,18,000 करसानें गी पुज्जा ऐ ते एह्दे तैह्त 89,63,00,000 दी रकम सिद्धे लाभार्थी करसाने दे खाते च जमा करवाई गई है। उन्हें आखिया जे जदों दी एह स्कीम शुरू होई है अजें तोड़ी 1,977 करोड़ रुपए जम्मू डिवीजन दे करसाने दे खाते च पाए गए न। जम्मू नगर निगम दे कमिश्नर डॉ देवांश यादव होरें मकामी लोकें गी अपील कीती है जो मरदमशुमारी दे खीरी गेड च सर्वे टीमें कन्नै पूरी चाल्ली सहयोग करन। यादव होरें नागरिकें गी सही जानकारी देने आस्तै अपील कीती। उनें नागरिकें गी प्रोत्साहित करदे होई आखेआ जे उंदे सक्रिय योगदान कन्नै मरदमशुमारी दी प्रक्रिया कामयाबी कन्नै तोड़ चढ़ी सकदी है। उनें आखेआ जे किट्ठे कीते गेदे आंकड़े शहरी नियोजन ते नागरिक सहूलतें च सुधार करने दे कन्नोकन्नी सार्वजनिक सेवाएं गी असरदार ढंगै ने करवाने च मदद होग। उनें आखेआ
9: 1 जून से सेंसस की कार्रवाई चालू है। 1,000 से ज्यादा एन्यूमरेटर जम्मू शहर के अंदर गली गली में घर घर पे जाके सेंसस का डेटा ले रहे हैं। ये सारा डेटा पूरी तरह से डिजिटली लिया जा रहा है। हम लोग लगभग 20 दिन पूरे कर चुके हैं और सिर्फ 10 दिन शेष हैं। जम्मू के सभी शहरियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सेंसस की एक्सरसाइज को ऑनेस्टली करें और यही सच्ची आप लोगों की सर्विस होगी कंट्री के लिए, और हमारी टीमों के साथ कोऑपरेट करके 30 जून से पहले पहले अपनी घर की जानकारी को जरूर दें।
0: मौसम विभाग ने कल 22 जून तक मौसम आमतौर पर बदलोखड़ा रौने ते कई सारे थारें पर एक या दो बारी बरखा पौने की पेशनगोई की है। विभाग ने गरज चमक, ऐनगड़ा पौने, बिजली चमकने ते धूड़ आली अंधी झखड़ झुलने दे भी आसार दसे न। इस बारे और जानकारी देते हुए मौसम विभाग के डायरेक्टर मुख्तार अहमद होरें आख्या
10: ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर, हेल स्टॉर्म और उसके साथ साथ इंटेंस शावर्स भी विद थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स कुछ एक मकाम पे। करंटली चिनाब वैली, रजौरी, रियासी, उधमपुर इन सारे जगहों पे बारिशें हो रही है, तो ऐसा ही वेदर 22 तक रहने के चांस। नदी नाले खासकर जहां पे बारिशों के कारण काफी ज्यादा वाटर लेवल अचानक से बढ़ जाता है, तो इन सारे जगहों से थोड़ा सा परहेज करें।
0: बीरपुर स्थित दाते दे तलाब पर अज दाता रणपत देव हुंदी छमाई मेल च हजारां बद्दे लोग बडलै सवेले थमां गै दाते दे दरबार च मत्था टेकने ते पवित्र तलाब च शनान करने गित्तै पूजा करदे न। सडोतरा ते चाड़क बरादरी दे लोग इस मेल च चेते तौरा पर हाजरी दिंदे न, जिसलै कि जम्मू प्रांता दे बक्ख बक्ख हिस्सें दे अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब ते हरियाणा दे किश हिस्सें थमां भी श्रद्धालु बरे च दऊं बारी लगने आले इस मेले च शिरकत करदे न। इस मेले दा शुमार डुग्गर दे सभनें शा बड्डे लोक मेलें च होंदा।
1: अखीरे च खास खास खबरां इक बारी परतियै। समूलची दुनिया च अज्ज अंतर्राश्ट्री योग दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू च मुक्ख समारोह की अगुवाई केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें कीती। श्रीनगर च एलजी मनोज सिन्हा होरें कार्यक्रम का नेतृत्व किया। नीट यूजी का परती इम्तिहान अज लैता जा रहा है। सुरक्षा के निग्गर बंदोबस्त। जम्मू जिले च स्थाई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की उपरोतली दुए बरे भी पासपोर्ट सेवा कृष्णा सम्मान हासिल हुआ है। पीएम किसान की तरफा किश्त च जम्मू प्रांते दे 4,18,000 किसानें गी नासी करोड़ 63 लाख रुपए की रकम हासिल हुई है। ते मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर च कल्ले तोड़ी बदलोखड़े मौसम, टामी टामी थारें बरखा ते गर्ज लिश्क कन्ने अंधी झक्खड़ दे आसार दसे न। एदे कन्ने गै खबरें दा एह बुलेटिन समाप्त हुआ।
11: FM 101 MHz पर ये आकाशवाणी भद्रवा है। 9:30 हुए हैं। सामिन अब सुनते हैं कश्मीरी मौसीकी। प्रोग्राम के आगाज़ में आगपो सुनाते हैं माजिद बशीर और साथियों की आवाज़ों में बशीर भद्रवाई का कलाम।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए अब सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब टेरेस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस वहां पे आप जो जब बैठा हुआ देखते हैं और जब वहां पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि यार भाई क्या है बात है, टेरेस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग ली है शायद, तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने और उसकी वजह?
0: आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं, डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पड़ा हूं, मेरा एजुकेशन वैसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज अ टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं नो बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं अटक जाता हूं कि इसका शब्द क्या है। और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है, तुम जज हो भाई, तुम्हें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ेगी, और वो टेक्निकल चीजें मैं अंग्रेजी में जानता हूं। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, फिर बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता हिंदी में, तो इसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूं अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था अपनी ही, लिखता था, समझता था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है, तुम ऐसे ही बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, ये वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें,
1: उस बच्चे को,
0: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही,
0: हम जज नहीं है, हम मेंटर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटर हूं, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
1: बिल्कुल सही,
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है, अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या उसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूँ कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है, अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल, अभी एजाइल को क्या बोलूं, तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है, चपलता, तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती, मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होती है, छोटे शहरों से, वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा, तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, लचीलापन, तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा। और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना, तो टेक्निकल चीजें से नहीं होती हैं, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती हैं, करतब दिखती हैं, लेकिन डांस में कहीं छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक अपने अपने एक शरीर के अंग से यहां से खेला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए, अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
1: अब टेरेंस यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने,
0: हाँ,
1: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि गाने बड़े कठिन है, यानी कि हाँ, डांस इसका जो है, हाँ, बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
0: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना वो कठिन होते हैं, बिकॉज़ एक बेंचमार्क कितना सेट किया ना
1: उनकी, एक फिल्म आपने की हुई है,
0: हाँ, रामलीला तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं। जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है,
1: अच्छा,
0: मनमोहिनी,
1: अच्छा मनमोहिनी,
0: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में, फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो, और वो इतने फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है, सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू यू नो कोरियोग्राफ ऑन स्टेज।

मोहिनी तेरी अदा तुझे जब देख ले तो फिर गदा भर से झर झर झर झर झर झर झर झर नाचे चमक चमक वो बिजली दीवानी है बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई तुझ में है कुदरत सारी खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई।

minute you can end it.

0: तो वो गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है बहुत डिफिकल्ट है. और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं.
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों ने मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूंगा विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल. तो मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे इसको. तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में, किस तरीके से वो किया गया है उसको अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेलकोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है. तो जो उसके बीट थे ठक ठक ठक ठक, हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है. तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत ज़रूरी है. अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमजोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया. आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.

0: तो आपने बात की कि संजय लीला भंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था,
1: हाँ
0: लेकिन फिर आपने संजय लीला भंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है, वो
1: हाँ
0: एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ।
1: देखिए मेरा उसमें, मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं खुद का जरूर कहूंगा कि जब आप संजय लीला भंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है। उनको डांस की जो समझ है ना, वो हमसे भी ज्यादा है। सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड। सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कैन प्लीज हिम वेरी इजिली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर काम करो तुम लोग, और हम 5-6 दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर को भी बोलते हैं कि आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा। वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी देखते नहीं है, उनको उनको पता है, वो ट्रस्ट बेच जाता है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला भंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट, वो 5 दिन की होती है। सो इट इज सो डिटेल्ड। मैं बताऊं रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए, तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड। हमने 2 दिन शूट कर दिया, फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया, सर हाँ सर मैं, सर ओके कॉल मी। सो मैंने कॉल किया, सर देखिए मुझे गाना मजा नहीं आ रहा। ऐसे तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं है, कुछ चेंज करें सर। नहीं, तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मज़ा नहीं आ रहा। दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा, तो हम फिर से शूट करेंगे कल। ऐसे कॉस्ट्यूम रातों रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज़्यादा बेटर लगेगा। तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने वाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक व्हाइट विल लुक बेटर, एंड फॉर मी व्हाइट इज माय फेवरेट कलर। आई सेड सर दिस विल लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज लुकिंग लाइक, इट वॉज लाइक अ वेरी राजस्थानी कालबेलिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम, बट ये व्हाइट में एक एक अलग ही एक एक यू नो एक
0: ग्रेस।
1: हाँ, एंड प्लस सी वो ही थिंग्स मेटाफोरिकली। अच्छा ये सॉन्ग अंग लगा दे इस सुहागरात वाला सॉन्ग, वो अभी भी शादी करके आए हैं, दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है, दोनों शोक मना रहे हैं, और इस माहौल में दीपिका को यू नो रणवीर को रिझाना है और इसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। सो इट्स ऑल्सो द सुहागरात वाला सीन, एंड येट इट हैज बी डन वेरी टेस्टफुली। फॉर हिम इट वॉज लाइक नॉट ब्लैक, ब्लैक इज ऑलरेडी फर्स्ट टाइम एक लड़की, सो व्हाइट, इट शुड बी व्हाइट, उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल। सो ही थिंक्स, उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है। तो वी शॉट द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन, 2 डेज वापस शूट किया हम लोग ने। तो एक अलग ही लेवल का एक यू नो कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है, और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा है।
0: जाहिर है,
1: हाँ,
0: जहां आपकी काम की सराहना भी हो रही है,
1: हाँ,
0: और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब चुका है।
1: तो मजा आता है काम करने का, और हम भूल जाते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, कैसे वक्त निकलता है पता ही नहीं चलता, हमें मुझे पता ही नहीं चला कब।

0: सेकेंडली मैं एक और मजे की बात करूंगा, यू नो एक चलने का शॉट है वो लेके धूप लगाती है ओके तन्वी के सर पे, और फिर उसको चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है, तो मैंने उनको दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया, लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था। अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से यू नो बिस्तर पर फैलेगा। उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे। ही इज दैट डिटेल। फिर वो दूसरा शॉट जो धनुची है उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है। तो देयर वाज अ असिस्टेंट ओनली फॉर द धनुची कि तुम्हें धनुची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि धनुची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी। तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था कि अगर वो धुआं नहीं निकला धनुची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों को धनुची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है और वो फेस से फिर वो अपना बालों को यू नो सरकाती है और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है और मेकअप
1: भी नहीं से चिंगारी निकल जाए
0: मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत ही वाज दैट डिटेल कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा, और वो लेके

0: देखिए कितनी बारीक बातें आपने बताई हैं, और हालांकि कोरियोग्राफी सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज है।
1: करेक्ट।
0: लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, हमारे जितने श्रोता हैं वो शायद इसे देख पा रहे होंगे। बहरहाल अब हम एक खास सवाल आपसे करेंगे। शुरुआत में जब आपसे बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि, जैसे मैंने कहा था कि अभी बहुत से कई आसमान आपको छूने हैं,
1: हाँ।
0: आपने भी कहा कई मकाम हैं।
1: हाँ।
0: क्या क्या सोच रखा है आपने?
1: यू नो, खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है। तो मैं सोचता हूँ कि कभी किसी को बताऊं मत, क्योंकि फिर आप पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैंने सबको बताया अभी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सहज रूप में हो जाए। जब हो जाएगा तो हम उसको सामने रख देंगे। कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए कि इसने ऐसा बोला था अब क्या हुआ, वो दबाव में नहीं आकर करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो अरमा है वो अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अरमा है। मैं चाहता हूँ कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने व्यक्तित्व पर भी काम करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, मेरा पूरा एक लिस्ट है फ़ोन पे कि इस पर ये साल 2020 में मेरा कोई लिस्ट, मेरा एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में मैंने ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि किस किस पर मुझे काम करना है, मेरे निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में, किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूं। बहुत सारे चीजें हैं।
0: दो सवाल और हैं।
1: हाँ।
0: एक तो बहुत इजी है।
1: हाँ।
0: दूसरा बड़ा कठिन है। इजी सवाल यह है कि एक्टिंग वेक्टिंग करने का इरादा है आपका?
1: हाँ। हाँ, लेकिन वो हीरो वाला नहीं है।
0: नहीं, अब तो खैर आपको कैरेक्टर रोल ही करने
1: मुझे
0: पड़ेंगे।
1: कैरेक्टर रोल ही पसंद है, और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो वो प्ले करते हैं जो हीरो के नहीं है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना बहुत ही सटल परफॉर्मेंस देते हैं, और वो दिल चुरा लेते हैं मेन वन। मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं सामने ना रहूं लेकिन साइड में रहकर भी मैं किसी का दिल जीत लूं, वो ज़्यादा मुझे पावरफुल लगता है। तो आई फील इट्स नाइस। आई मीन, अगर मेन कैरेक्टर मिल जाए तो ग्रेट, नॉट एस्पेशली इफ इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे ना, मैं भी थोड़ा चूजी हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरी फिल्में जो मैं कर रहा हूँ, या मैं एक्टिंग की जो मुझे जो मैं अपने अरमान पूरा करना चाहता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं, मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर रोल इतना अच्छा हो या जो मेरे दिल के करीब हो, और रोल ऐसा क्यों अच्छा लगेगा मुझे अगर वो ब्लैक एंड वाइट ना हो। मुझे ब्लैक एंड वाइट रोल्स मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं। मुझे ग्रे कैरेक्टर के रोल्स बहुत पसंद है। एक इंसान या एक कैरेक्टर में वो सब अच्छा नहीं हो सकता, उसमें शेड्स होने चाहिए, ग्रे होना चाहिए। वो ग्रे एरिया जो है वो हम दिखाते ही नहीं है। हम पिक्चर को बहुत ही, मोस्ट ऑफ टाइम्स आजकल दौर में एटलीस्ट फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मुझे वो हीरो विलन बहुत बोरिंग लगता है। अगर ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहाँ पे एक इंसान है लेकिन तुम्हें पसंद भी है, लेकिन उसमें कोई दो तीन तीन चीज़ें उसकी खोट भी है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, एवरीवन इज लाइक दिस,
0: खोट तो होती है।
1: एग्जैक्टली। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट जो होता है ना, जो जनरली फिल्म मेकर्स में कि एक हीरो अच्छा है और ये विलन है, मुझे बहुत ही बकवास लगती है। एंड आई डोंट लाइक दोज रोल्स, बिकॉज देयर इज नो चैलेंज एंड देयर इज नोबडी लाइक दैट। इट्स अनरियल, इट्स अ फेरी टेल। तो अगर रियलिस्टिक, अगर ऐसे फिल्में बनती हैं एंड रियलिस्टिक रोल्स, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं आज की तारीख में, जैसे अनुराग बासु या अनुराग कश्यप जी जो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जोया अख्तर ने बहुत अच्छी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल डायरेक्टर्स हैं, जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं असगर फरीदी जो ईरान के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म सेपरेशन और एक सेल्समैन बनाई है। अगर उनकी पिक्चर जब मैं देखता हूँ तो मैं मतलब बोलता हूँ कि ये क्या एक्टिंग है भाई, इतनी नेचुरल, इतने सहज रूप में, लगता ही नहीं कि इनको पता भी है कि कैमरा लगा था। वो वाला एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो सटल रूप में, कि आप इतने इतने इतने खो जाओ वो सीन में कि जो दूसरा सामने वाला जो देख रहा है इसको पता भी नहीं कि कैमरा चल रहा है, ये तो ऐसे ही निकल गया। वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। इट शुड नॉट फील कि अच्छा ये एक्ट कर रहा है। तो वो एक अलग लेवल का।
0: अब एक बड़ा कठिन सा सवाल है।
1: हाँ।
0: सवाल ये ऐसा है कि जो मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस मोमेंट के बाद।
1: अच्छा।
0: और वो है कि शादी के बारे में।
1: देखिए, मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। मैंने कहा है कि मेरे लाइफ में, हमारे फैमिली में सभी मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरी माँ को अगर एक तो चाहिए ना जो संतान जो एकदम अलग करे, तो वो मैं हूँ। और आई ऑल्सो कॉल माय सेल्फ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ जल्दी किसी के साथ, किसी इंसान के साथ भी और किसी चीज़ के साथ भी। मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को यू नो इवॉल्व करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, यू नो ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, और मैं किसी एक के साथ नहीं जुड़ा रख सकता। सो आई नो कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। तो अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे का जीवन नष्ट कर सकता है। मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ और मैंने देखा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं ये पहले क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिगर ही नहीं करता। मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिलें पर ज़्यादा अमल करना चाहता हूँ, और मुझे इट्स नॉट कि मुझे कोई किसी का साथ चाहिए। मैं अपने आप खुद, मैंने पूरी लाइफ खुद ब खुद जी है, की है, तो मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे किसी की यू नो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को संभाला है बचपन से।

0: एक और बात है हाँ। कि आपने अब ये तो तय कर लिया, बता दिया कि हाँ। ये नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
0: लेकिन आपके अंदर जो कला है
1: हाँ,
0: देखिए कला बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपकी अलमारी में रखा हुआ आपका धन,
1: करेक्ट,
0: जिस तरह से अलमारी में रखा हुआ धन बाप अपने बेटे को दे के जाता है, उसी हाँ। तरह से अपने अंदर की कला विरासत में अपने बच्चों को दे के जाता है
1: हाँ।
0: तो आप अपनी विरासत किसको देंगे?
1: एक एक जो आप कह रहे हैं, लोग बहुत कहते हैं हाँ ये जो आपके गुण हैं वो आ जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बाप में क्या डांस का गुण था जो मेरे में आ गया? कुछ नहीं था ना, मुझे विरासत में डांस तो मिला ही नहीं, लेकिन एक लगाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आप किसी को भी आप अपना मानते हो, और मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, बच्चों जो मेरे साथ सीखते हैं उनको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चीज़ें जो मैंने सीखा है समझा है दे दिया है उनको। जो मेरी विरासत है वो वैसे भी मेरी नहीं है, मुझे सौगात में मिली थी, मुझे यू नो आशीर्वाद के रूप में मिला था, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता उसको। मेरा फर्ज है कि मैं जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे धन संपत्ति और शौहरत मिली है, मैं उसको बांटूं, क्योंकि ये करेंसी है, ये चलनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, ये एक के पास नहीं देनी चाहिए, ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आते जाएगा, इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, और बहुत लोग जैसे शक्ति हो, पुनीत हो, बहुत बड़े बड़े, ये तो फिर भी जाने माने लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं, और अगर वो उसकी उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं किसी को भी अपना मना सकता हूं और उसको बता सकता हूं, अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है, मैं अपने पास सकना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो, हम क्या है, हम तो आज यू नो हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम है या जो हमने दिया है, जो हमने समझा है, वही हमें बांटना है। हम एक खुशबू की तरह आए हैं और खुशबू की तरह चले जाएंगे। मधुबन

0: आप खुशबू की तरह तो अभी नहीं जाने देंगे हम आपको, एक सुरीली खुशबू जरूर हम चाहता हूं कि आप फैलाएं। यहाँ पे क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी लंबी बातचीत जो हुई, अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें आपने आज विविध भारती के श्रोताओं के साथ बांटी हैं, पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको?
1: बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने पैदा किया कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आप फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने उसको गाइड किया बहुत मज़ा आया। और ऑल्सो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूँ बिकॉज विविध भारती ये शब्द मेरे बचपन से जुड़ा है, बिकॉज हम सिर्फ रेडियो सुनते थे। आजकल के बच्चे शायद ये बहुत कम सुनने में आएगा कि विविध भारती, जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना हम, उनको क्या है विविध भारती क्या है, लेकिन हमें पता है कि इसकी अहमियत क्या है बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं। तो फॉर मी व्हेन जब आपका कॉल भी आया ना, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ मुझे जाना है क्योंकि इतनी ये जो आपकी जो विरासत है, जो ये जो आपकी जो परंपरा है जो चली आ रही है 1957 से, एक अलग ही परंपरा है और इसके साथ जुड़ना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ एक मैं चाहता हूँ, वो एक सुरीली खुशबू की जो मैं बात कर रहा था, आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा गाना हमें सुनना चाहिए?
1: कौन सा गाना जो एकदम लोगों को खुश कर देना? है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आ

0: इस गाने में एक लाइन थी, न जाने किस पे आएगा।
1: करेक्ट।
0: आपका दिल तो अब छोड़ देते हैं, बहुत पे आया और अपनी जगह पे
1: आया है और चला गया अभी,
0: और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया,
1: आ गया हाँ।
0: लेकिन एक खास बात है, हमारे जितने सुनने वाले हैं सबका दिल आप पर आ गया।
1: अरे क्या बात है।
0: और फिलहाल तो मेरा मन तो नहीं हो रहा, इतनी लंबी बातचीत के बाद भी लगता है बैठ के बात करते रहे आपसे, लेकिन आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार एक किसी और आसमान पर जब आप पहुंच जाएंगे तब हम आपसे फिर एक और मुलाकात करेंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और आज तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं अमरकांत आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहता हूं, और ये हमारी बहुत खुशनसीबी रही कि आपने न सिर्फ टाइम दिया बल्कि इतने इत्मीनान से इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि मैं दिल खोल के बात करूं, तो शुक्रिया, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही endearing है। जब प्यार सामने से आता है तो एक इंसान भी खुल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव। और जबी सभी जो सुनने वाले हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, आप ज़रूर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे सर रहा तो बहुत सारे जो मकाम है ज़िंदगी में मैं ज़रूर हासिल करना चाहूँगा आपके आशीर्वाद से।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। तकती के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: आज की जो विविधा है इसमें फुहारों की बात होगी, लेकिन ये जो वर्षा है ये सुरों की वर्षा है और सुरों की इस रस वर्षा में हम भीगेंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में दो महान संगीतकारों की बात, एक ऐसे संगीतकार की बात जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को बहुत कर्णप्रिय की थी, और एक और संगीतकार की बात जिनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है और वो है वर्सेटाइल। तो हमारे श्रोता समझ रहे हैं हम किनकी बात करने जा रहे हैं।
0: दो संगीतकारों की हम बात करने वाले हैं, इनमें जो सीनियर है, वरिष्ठतम है, उनकी बात पहले करते हैं।
1: जी,
0: कल्याण जी वीर जी शाह।
1: वाह, एक से एक सुंदर मीठे धुनों के रचयिता कल्याण जी वीर जी शाह।
0: मूलतः ये शाह परिवार गुजरात का जो कच्छ इलाका है वहाँ के कुंद्रोड़ी गांव का रहने वाला था, और कल्याण जी के पिता मुंबई आ बसे थे व्यापार करने के लिए, और दोनों भाई कल्याण जी और आनंद जी उन दिनों व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाते और संगीत सीखा करते।
1: हाँ, और बड़ी दिलचस्प बातें उस समय से जुड़ी हुई हैं जो कई बार हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है, मुझे लगता है उन्हें भी पता है। लेकिन ये जरूर है कि उनके जो शॉप थी, उनकी जो दुकान थी, वहाँ एक संगीत रसिक आया करते थे।
0: जी जी।
1: और उनके साथ ये बातचीत जुड़ी हुई है।
0: वो संगीत शिक्षक थे असल में, वो कल्याण जी के पिता की उसी दुकान के ग्राहक थे, बहुत पुराने ग्राहक थे, और सौदा ऐसे ही तय हुआ करता था हमेशा कि जो पैसे उन्हें देने होते हैं उसके बदले वो कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाया करते थे।
1: क्या बात है, देखिए कहां कहां कैसे कैसे संगीत रचा बसा है। एक दुकान है जहां पिता के साथ दो पुत्र हैं और वहां संगीत का जो है माहौल बना हुआ है। क्या ही सुंदर दृश्य होगा और क्या ही सुंदर बातें हैं ये जो हम सुनते हैं।
0: और जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे शाह परिवार, वहां बहुत से गुजराती और मराठी संगीत प्रेमी बसते थे।
1: हाँ।
0: जी, पूरा माहौल ऐसा था कि गणेश उत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, अलग अलग अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम वहां हुआ करते थे, और कल्याण जी और आनंद जी को बचपन से ही मौका मिलता रहा संगीत वो सुना करते, सीखा करते, बहुत से वाद्य वो बजाया करते। और चूंकि कल्याण जी बड़े भाई थे, वो पहले इंडस्ट्री की तरफ आए, और 1954 की बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विदेश से आया था, उसका नाम था क्लेवियोलाइन, और इसमें किसी कीबोर्ड या पियानो की जैसी कीज थी।
1: जी जी।
0: और उस कीबोर्ड पे इन्होंने वो धुन बजाई थी जिसे हम नागिन धुन के नाम से जानते हैं।
1: हाँ, हेमंत दा ने अपनी फिल्म नागिन में उसी धुन का प्रयोग किया है, और हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं कि कल्याण जी भाई ने इस धुन को बजाया और अमर धुन हो गई है।
0: बिल्कुल, और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। पहले वाद्य बजाते थे, बाद में कल्याण जी भाई असिस्ट किया करते थे हेमंत कुमार जी को, और फिर उन्हें मौका मिला स्वतंत्र रूप से एक फिल्म के संगीतकार बनने का, और वो फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त।
1: और क्या ही मीठे गीत सुनके हैं। तो श्रोताओ, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कल्याण जी वीर जी शाह की, उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त तक की जो यात्रा है उसका एक संक्षेप में विवरण अभी तक जयंत जी ने दिया, और मुझे लगता है ये समय आ गया है जब बाकी की बातें जो हैं या इसके अलावा जो बातें हैं वो स्वयं हम कल्याण जी के स्वर में ही क्यों न सुने। और आज श्रोताओ, कल्याण जी वीर जी शाह जी को हम याद कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम विविधा में 30 जून उनका जन्म दिवस है, तो आज विविधा में जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यही है। श्रोताओ, संगीतकार कल्याण जी वीर जी शाह से बातचीत की ये रिकॉर्डिंग जिसे हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं, और कल्याण जी से बातचीत की है गणेश शर्मा ने।
2: ये सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने, कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी, उसकी कुछ यादें हमें बताइए।
3: शॉर्ट में कहूँगा कि वो क्लेवलिन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था, उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई, और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली नागिन बीन, क्योंकि फॉरेन में तो बीन समझते नहीं, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी हो रही मेरे पिया को न दसी हुई, उसके बाद ये सुन के वो मुझे लगता है जालान साहब ने सुना था, और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने, वो नागिन पीछे बन रही थी, उसके लिए मुझे बुलाया गया और फिर उसमें नागिन भी बजाई मैंने और वो आप पूछेंगे कि उसमें कोई कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाइए तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि प्रियांश जी कुछ भी बोलो मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपरहिट होने वाला है कि आप याद करेंगे मेरी बात याद करना आज भी हम याद करते हैं सही लता जी ने कहा था उससे।

0: कल्याण जी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए।
1: लता जी के बारे में कुछ कहना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला, तो वहाँ भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ, इससे ज़्यादा वर्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वही गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुना था ऐसा लगता है कि ज़रा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं अभी कुछ कम रह गया, कम रह, बस यही, बस इनकी खूबी ऐसे आगे कुछ नहीं।

0: वीर हो।
1: कलंजी भाई, स्टेज प्रोग्राम्स आपने सबसे ज्यादा किए हैं। एक खास बात यह भी रही है कि उसमें सभी स्टार्स, सभी फिल्म स्टार्स आपके स्टेज शोज में रहे हैं, तो स्टेज आपने कब से शुरू किया और कुछ बातें उस बारे में बताइए हमें।
2: एक्चुअली क्या था कि हम फिल्म लाइन में आए उसके पहले स्टेज की दुनिया में थे। हमारी एक पार्टी चलती थी कल्याण जी विजयन पार्टी, तो उसमें काफ़ी शो करते थे हम। मतलब उसमें क्या, उस टाइम के रतन और इस टाइप के गाने पॉपुलर होते थे, वो गाने बजाने के और पब्लिक को खुश करना। उसके बाद तो नागिन की बीन आई, उसके बाद तो स्टेज की दुनिया हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा हमेशा चलता था कि अगर कोई पॉपुलर सिंगर और पॉपुलर एक्टर अगर स्टेज के ऊपर आ जाए तो बहुत ही बड़ी बात बन सकती है, क्योंकि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो सिंगरों को उस टाइम हेमंत कुमार, अपने मुकेश जी, पहले वो शर्माते थे क्योंकि आदत नहीं ना, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनको स्टेज पे ज़रा प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कुछ बोलना भी पड़ता है कभी कुछ भी। लेकिन सबको प्रैक्टिस डालते डालते और सभी अच्छे हो जाए उस टाइम। फिर आए किशोर कुमार। किशोर कुमार तो पहले एकदम डरते थे ऑडियंस के सामने आना करना, पर बड़ा उनको ऐसे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए थे फिनेंशियल, तो उनके जो एडवाइज़र था वो बोले किशोरदा आप स्टेज पे आ जाइए तो बहुत पैसे मिलेंगे। हम भी बोलते, तो बोले नहीं, स्टेज के ऊपर मैं जाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो हम उनको कैसे समझाते थे, एक दिन मैंने समझाया उनको, किशोरदा आप क्यों डर रहे, मेरे को समझाइए कि आपके सामने जो भी बैठे हैं वो 7 जन्म तक किशोर कुमार नहीं बन सकते। क्यों कि सामने कोई बैठे हुए ऐसे तो नहीं है कि लता मंगेशकर बैठी हैं, कि बड़े गुलाम अली बैठे हैं, कि आमिर खान बैठे हैं, कि आपको डर लगे कि अरे बात पॉइंट अच्छा है, अच्छा फिर से बोलो, फिर से बोलो, मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब वो अगर हों तो ठीक है भाई, हमको डर लगे कि भाई वो क्या होने, ये तो बेचारे ऑडियंस है एकदम, जिसने गाना खा लिया, आपके इतने फैन है यार, एक दो दफ़े बोलते रहो बोलते रहो, बहुत अच्छा यार, मैं क्यों डर रहा हूँ, फिर क्यों डर रहा हूँ, नहीं डरूंगा, ऐसे करके करके उनको स्टेज पे ले जाते थे और डरते थे। पर बाद में तो ऐसे मास्टर हो गए कि ओ हो, आप बिलीव नहीं कर सकते, उनके तो इतने किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा आपको तो लगेगा। एक दिन क्या हुआ, हम कलकत्ता में गए उनके प्रेजेंटेशन में, बताता हूँ, तो योडलिंग उन्होंने निकाली, मतलब योडलिंग, तो हम लोग बैठे हुए कोई प्लान बने थे, मतलब किशोरदा एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आपने, तो हम बड़े, तो मेरा किशोरदा आप जो ये योडलिंग जो निकाले वो कैसे आपको आइडिया आया। वो बोले मैं छोटा था बच्चा एकदम, तब मैं बहुत शरारती था, मेरी माँ बहुत मारती थी मेरे भी, तो बाद में क्या हुआ मैं अच्छा हो गया, फिर भी मेरे को पिट रही है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार रही है मेरे को माँ कुछ। तो बोले तुम रोते हो तो एक आवाज़ निकलती है, हमको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला कि किशोरदा अभी वो आवाज़ निकाली आप, इतने अच्छे आप बात कह रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, मेरे को मारो तुम। अरे मतलब कैसे मारेंगे इतने ऑडियंस के बीच में, मैं आपको मारूँ ऐसे? तो बोले तब मैं तो नहीं निकलूँगा। तो हमने ऐसे प्लान किया था, मैंने ऐसा एक जोर से एक ऐसे लाफा मारा, तो उन्हें धड़ करके और उसमें से रो के फिर उसमें आवाज़ निकल के उन्होंने गाना शुरू किया। बस ये स्टाइल।

0: अवार्ड से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट किसी अवार्ड फंक्शन का अवार्ड लेते हुए आप श्रोताओं को बताइए।
1: कोई भी अवार्ड मिलता खुशी तो होती है, उसमें कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और पहला ही जनता के सामने जाते हैं और उनकी क्या खुशी हुई है, वहीं हमें अवार्ड मिल जाता है। बाकी तो फिर किसने रिकग्नाइज़ किया कि नहीं किया उसमें नहीं, लेकिन जब भी कोई अवार्ड लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने प्यार से लोगों ने हमें अवार्ड दिया है, तो हम इस संगीत के ज़रिए क्या समाज की सेवा कर सकते हैं, क्या देश की सेवा कर सकते हैं, क्या हमारे आने वाले भाइयों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारा हमेशा माइंड में रहता है। इसलिए जब भी कोई अवार्ड लेते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, बस यही है। फिर आप अगर मजाक की बात करें तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, तो हमें कोरा कागज़ के लिए मिला, लेकिन बहुत लेट मिला था, 27 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें मिला था। तो आप पूछते हैं कि ये अवार्ड मिलने से आपको क्या महसूस हो रहा है आप, तो मतलब बहुत खुशी हो रही है। क्यों नहीं खुशी हो, क्योंकि बड़ी उम्र में लड़का हुआ है।
0: कल्याण जी भाई, इस तरह के जो जोक्स हैं, जो एक चुटकुले और आप बातों बातों में कहते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत मशहूर है। आप जोक्स बहुत अच्छा बोलते हैं और चुटकुले आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: जब ये ह्यूमर का सब्जेक्ट निकाला है तो मुझे लगता है कि ह्यूमर को मैं बहुत महत्व देता हूँ, कि वो क्या कि जाम जाए कोई लोग हंसते नहीं हो सब है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसने इंस्पायर किया हो तो आचार्य रजनीश जी, अब ओशो, उन्होंने मुझे बोला था कि कल्याण जी आप में जो आर्ट है इसको आप डेवलप कीजिए, वो कमाल का आर्ट है। बिल्कुल अगर हमारे में भी हो जाता तो मैं तो जो मेरा सब्जेक्ट है प्रीचिंग ना लगे इसलिए मैं आपसे काफ़ी चीज़ें एडॉप्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया, मैंने ह्यूमर की क्लासेज भी शुरू किए थे। अभी आप बोलेंगे कोई जोक सुनाई, जैसे मैंने बोला अभी बड़ी उम्र में लड़का, पिक्चर साइन की थी नन्ना फरिश्ता, तो हमको पहली मद्रास की फिल्म थी हमारे पास, तो वहाँ स्टोरी राइटर बड़ी सीरियस स्टोरी सुना रहा था कि हमारी स्टोरी देखो ये है ये, और उसमें लास्ट में बोला कि इसमें एक लोरी आती है बस, दिस इज बेस्ट आके पिक्चर में, वो लोरी बहुत काउंट करती है, लोरी लोरी लोरी बहुत अच्छी, कल्याण जी भाई बस बनाना बना। तो मैंने ऐसे बोला कि हमारे तो ऑर्डिनरी गाने में लोग सो जाते हैं, तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे, सवाल ही नहीं। तो इतना बड़ा लाफ्टर आया, वो क्या वो समझे नहीं, बाद में उनको समझाएगा कि हम सही नहीं बोल सकते।

0: मुकेश जी को आपने उनके करियर के सबसे ज्यादा गाने गवाए हैं, बहुत से हिट गाने मुकेश जी के आपके द्वारा संगीतबद्ध हैं।
1: मुकेश जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब भी वो गाते थे तो सीधे हार्ट तक पहुंच जाते, सीधा हृदय, कोई दिमाग के ऊपर गाना नहीं जाता था कि मेरे टूटे हुए दिल से अगर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही इनका दिल टूटा हुआ है। बस ये इनकी एक खूबी थी, तो फुल ऑफ एक्सप्रेशन, और जितने वो अच्छा गाते थे इतने ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट आर्टिस्ट। सभी गाने उन्होंने बहुत प्यारे गाए, लेकिन शमीम जयपुरी जिनका पहला ही गाना हमने मतलब उन्होंने लिखा था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, अर्जुन हिंगोरानी की पिक्चर दिल भी तेरा,

0: कल्याण जी भाई, गायक गायिकाओं की बात हम कर रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी का जिक्र अगर ना हो तो प्रोग्राम पूरा नहीं कहलाएगा।
1: मुझे लगता है कि रफ़ी जी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। रफ़ी जी वॉज ए ऑलराउंडर आर्टिस्ट। जैसे क्रिकेट में हम चाहते हैं कि भाई बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर भी हो, बॉलर भी अच्छा हो, अच्छा फील्डर भी हो, किसी भी रंग का गाना गवा लीजिए, क्लासिकल से लेके कॉमेडी गाना, पैथोस गाना। और एक हीरो के लिए कोई भी हमें दूसरा सिंगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी इसके लिए और, बस ये इनकी खूबी थी और बहुत प्यार से गाते थे, बस यही।

0: कल्याण जी भाई, कोई ऐसे संगीतकार हमारे और वरिष्ठ संगीतकारों में जिनके काम ने आपको इंस्पायर किया हो?
1: कोई भी आदमी किसी भी सब्जेक्ट में जब आगे बढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप लोग होते हैं उनको जरूर सुनता है, देखता है क्या किया है उन्होंने। तो हमारा म्यूजिक का सब्जेक्ट रहा, तो हमने अपने टाइम में देखा कि नौशाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, क्या बात है। फिर उस टाइम के सी रामचंद्र, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मदन मोहन, उन्होंने अच्छा किया। शंकर जयकिशन, उन्होंने अपना एक रंग अलग दिखाया था। संजीव चौधरी, अनिल विश्वास, ये सब हैं। लेकिन अगर हमें पूछे कि भाई आपको ज़्यादा में ज़्यादा किसने इंस्पायर, तो मैं एस डी बर्मन को बहुत मानता। काहे के लिए कि एक 4-5 मिनट का हमारा गाना होता है, उस 4-5 मिनट के अंदर 2-2.5 मिनट सिंगर गाता है, बाकी ऑर्केस्ट्रा बजता है। तो उसमें ऐसा एक एटमोसफियर पैदा करो कि सिर्फ कानों से दिखाई देने लग जाए कि ये बनाया है, ये बनाया, वो बहुत मुश्किल है। और वो बनाते थे तो हम उसको बहुत स्टडी करते थे, क्या किया गया इन्होंने, कि अगर कोई सीने के बादल है तो लगता है कि बादल गरज रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ऐसे हर रंग में उन्होंने अपना अपना रंग। सुन मेरे बंधु, उनका जो अपने स्टाइल से गाया है वो सुनाइए, बहुत मजा आया।

0: कल्याण जी भाई, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एक ग्रुप जिसका नाम है लिटिल वंडर्स, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को परफॉर्म करते देख, गाते देख, बजाते देख, विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों में इतना टैलेंट हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप को फॉर्म करने में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए?
1: फिल्म की दुनिया और स्टेज की दुनिया, तो उसमें देखा कि जब भी कल्याण जी आन जी नाइट होती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोर कर जाए तो बाल कलाकार कर जाता था। कितने भी बड़े आर्टिस्ट आए हों लेकिन जब भी एक छोटा कलाकार आ जाता था तो भले वो इतना उसका अच्छा नहीं भी परफॉर्मेंस हो फिर भी इतनी क्लैपिंग ले जाता, तभी सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और फिर बच्चों में एक क्या है कि मैं देखा हूँ बहुत फास्ट डेवलपिंग, उनको कोई टेंशन नहीं होता ना, उनको जो काम दिखा देंगे बस वही काम करना है उनको। तो देखा कि ट्राई करें हम, और आज देखते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि शो की दुनिया का सबसे बड़े बड़ा शो है, क्योंकि तीन पीढ़ियों को बच्चे संभालते हैं। एक तो छोटे बच्चे आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये तीन पीढ़ियाँ एक ही, और वो तीन घंटे बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अगर जिसने शो देखा हो कोई बता सकता है कि वो बहुत है। और हम बहुत लकी रहे कि बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, वहाँ से लेके जितने अभी गोविंदा जी आए थे, अमरीश पुरी आए थे, सभी ऐसे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल काम छोड़ के अपने बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सिखाते हैं। ये एक शो देखा हमने कि कोई की आदमी को जेलसी नहीं होती है, सब एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बस यही खूबी है।
0: बच्चों की बात चली है, मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा गाना आप सुनवाएं श्रोताओं को जो आप ही का कॉम्पोजिशन हो और बच्चों के लिए हो। जो गाना
1: बजाइए, एक बट्टा दो, दो बट्टी चार, कालीचरण में था जिसमें अनुराधा पौडवाल और कंचन जी ने गाया था, और वो मुझे लगता है वो दोनों का पहला ही गाना था उसे।

0: कलन जी भाई, संगीत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत से साधु संतों का सत्संग भी आपको मिला है, तो आपकी जिंदगी की फिलॉसफी, जिंदगी का फलसफा क्या है, हमें बताइए।
1: अच्छा सवाल है ये, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बचपन में जब भी कोई ज़्यादा तो एजुकेटेड है नहीं, लेकिन पिताजी मेरे वो भी कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी बातें करते थे और प्रैक्टिकल में ना आचरण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो कहते थे बेटा देखो कोई भी लाइन में जाना, लेकिन जीवन की ज़रूरत कोई ज़्यादा नहीं है, और वो ज़रूरत से अगर आगे निकल गए तो बाकी का चीज़ है वो बांटना, ऐसा हो ना पैसा काम का रख के बैठे हुए कुछ बड़े, वो भी बात हमें अभी भी माइंड में है बिल्कुल, और बड़ों की इज्जत करना ये करना, तो वो सब हमारे बचपन में जो डाले हुए संस्कार हैं वो अभी तक हैं। तो हमने देखा कि हम संगीत में आगे बढ़ गए तो मनी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बाकी सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर आदमी को निजी आनंद लेना हो तो दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो ये अच्छा लगता है, तो ये उनकी वजह से हम जितना भी कुछ अपना जो भी कुछ है तो उस चैरिटी में डालने की कोशिश की। फिर अपने शो की दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं उनके लिए जो भी कुछ कर सके तो ये करते हैं, तो ये इसका एक आनंद है, वो एक बहुत ही बड़ा आनंद है और सभी को इसमें लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

0: चलना।
1: मनीषा जी, इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के कैसा अलग सा आनंद महसूस कर रहे हैं? हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से इसको अनुभव कर रहे होंगे।
2: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जयंत जी आपने। और संगीत में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो इंसान के मन मस्तिष्क को शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है। बहुत परेशान अगर कोई इंसान है, डिप्रेशन में है, तो वो एक मधुर संगीत सुन के आनंदित हो उठता है, और अगर आनंद में है तो उसका आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: संगीत का सौंदर्य जिन कलाकारों को ये गुण मिला है, जिनको माँ सरस्वती ने ये आशीर्वाद दिया है, वो वाकई बहुत पुण्यात्मा होंगे जिन पर ये आशीर्वाद माँ सरस्वती का है। एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, और वो हैं राहुल देव बर्मन।
1: वाह, क्या बात है।
2: जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था ना शुरुआत में,
1: वर्सेटाइल, वैविध्यतापूर्ण कलाकार।
2: जी हाँ, और आपको नहीं लगता जयंत जी कि राहुल देव बर्मन जी की संगीत की जो विशेषता है ना, वो ये है कि वो नित युवा संगीत है हमेशा।
1: जी, जी।
2: आज तक भी जो आज की जो नई पीढ़ी है, वो भी आर डी बर्मन के संगीत को लेकर उतनी ही उत्साही है जितनी पुरानी पीढ़ी थी, या 60, 70 और 80 के दशक में उस संगीत को जितना पसंद किया उस पीढ़ी ने, उतना ही पसंद आज की पीढ़ी भी कर रही है।
1: और विविधता, ये जो शब्द है, इसको सार्थक किया है आर डी बर्मन के संगीत ने।
2: जी हाँ,
1: आप उनका पहला गाना ले लीजिए या उनका आखिरी गीत कंपोजिशन ले लीजिए।
2: जी हाँ, एक लंबा दौर आर डी बर्मन साहब का रहा संगीत में, और पहला गीत जिसका जिक्र भी जयंत जी कर रहे हैं, छोटे नवाब का
1: बिल्कुल,
2: गीत
1: बिल्कुल।
2: जो उनकी पहली फिल्म थी, घर आ जाए घिराए बदरा सावरिया,
1: रोंगटे खड़े हो गए।
2: जी हाँ, शास्त्रीय संगीत की छाप उसमें स्पष्ट दिखाई देती है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सर्वाधिक प्रयोग धर्मी संगीतकार भी राहुल देव बर्मन रहे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। न केवल संगीत रचनाओं में जिस तरह के वाद्य इस्तेमाल किए जाते थे, वो कई बार ऐसे वाद्य होते थे जो लोक गीतों में हमें सुनाई देते हैं।
2: बिल्कुल।
1: या कई बार नए तरह का वाद्य वो बनाते थे, यानी कि बाल्टी में किसी यंत्र को डुबा करके और उसमें से आवाज निकालना, लोहे की किसी चीज को पानी में डुबा करके उससे आवाज निकालना, ऐसे कई प्रयोग उन्होंने किए।
2: बहुत इनोवेटिव जिसे कहा जाता है, बहुत नए नए प्रयोग करने वाले आर डी बर्मन साहब के बारे में हम आपको क्या बताएं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे राहुल देव बर्मन संगीत नहीं रचते थे, संगीत का एक अनुष्ठान करते थे, और उस अनुष्ठान का जो उद्यापन है वो हुआ था 1942 अ लव स्टोरी के साथ।
1: वाह वाह।
2: जो उनकी आखिरी फिल्म थी। जयंत जी, एक ऐसे प्रयोग धर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिनका जन्मदिन 27 जून को सभी संगीत प्रेमियों ने मनाया, और अभी तक उसका असर हम सबके दिलो दिमाग पर है।
1: जी जी।
2: श्रोताओ, आर डी बर्मन साहब के बारे में हम जब इतनी बातें कर रहे हैं, तब आपका ध्यान जरूर इस बात पर आकृष्ट हुआ होगा कि हम किस कार्यक्रम को अब आपको सुनवाने जा रहे हैं, तो आप शायद बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मुझे जयंत जी के चेहरे से भी लग रहा है कि वो समझ गए। तो श्रोताओं, हमने जो आज ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए चुनी है, ये एक लंबी श्रृंखला है विविध भारती की, और इसकी प्रोड्यूसर छाया गांगुली जी हैं, जो खुद एक बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी कलाकार। और छाया जी का तो ये उपकार है कि उन्होंने तीन महान कलाकारों को एक साथ विविध भारती के मंच पर।
1: यही विशेषता इस श्रृंखला की है कि आर डी बर्मन साहब के संगीत पर केंद्रित हैं, मगर उनसे बातें जो कर रहे हैं वो भी महान कलाकार है।
2: जी हाँ।
1: आशा जी और गुलजार साहब।
2: जी हाँ। और जब इन तीनों कलाकारों का एक कुंभ होता है तो ये कार्यक्रम बन के निकलता है, और वो है मेरी संगीत यात्रा, जो सीरीज विविध भारती की बहुत पॉपुलर सीरीज है। श्रोताओं, आप आज जो सुनेंगे ना, उसमें हम तीन अंक उसके प्रसारित करेंगे। तो पहला जो अंक है, उस बारे में आप बताइए।
1: जी मनीषा जी, पहला हिस्सा जो है उसमें आरडी साहब ने अपनी पहले फिल्म की, यानी छोटे नवाब के संगीत की बात की है।
2: तो पहले उसी हिस्से को सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: जी जी।
3: मेरा पहला गाना गुलजार छोटे नवाब फिल्म का था, और उसमें पहला गाना जो है दीदी, मतलब लता जी खुद गाई थी, और उस गाने के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है।
0: अच्छा,
3: ऐसा है कि पुराने चावल जैसा होता है, बहुत घमंडी होते हैं सब।
0: अच्छा।
3: तो मेरे पिताजी भी बहुत घमंडी थे, दोनों का कुछ अनबन हो गया था और दोनों कुछ बोलचाल बंद हो गया था।
0: अच्छा अच्छा, कट्टी हो गई थी।
3: कट्टी हो गई और दीदी गा नहीं रही थी पिताजी के लिए, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी और से गवाएंगे। तो कुछ दिन तक गाना उनके बगैर ही हुआ। तो मेरा वो पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये मेरा पहला गाना है तो आपको गाने पड़ेगा। तो कहा क्यों नहीं गाऊंगी, कौन सी डेट है बताओ। तो डेट फिक्स करके बताया। तो उन दिनों

0: उसके बाद हमारे गाना तो हुआ ही, पहला गाना हुआ घर आजा घिरा है, और उसके बाद से फिर पिताजी के साथ लता भाई के अच्छा हो गया, और गाने गाए बहुत सारे पिक्चर।
1: एक बात मैं आपसे पूछूं?
0: बिल्कुल,
1: सच बताने का।
0: हाँ बताइए।
1: जब आपने लता मंगेशकर को
0: जी
1: पहले रिहर्सल के लिए
0: ये कुछ
1: गाना शुरू किया,
0: घिराव करके मेरे तरफ आ रहे,
1: तब आप अंदर से कांप रहे थे?
0: बिल्कुल कांप रहे थे। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए, पहली दफा उनको मिला मैं, मेरे ख्याल से 1950-51 में मिला, वो ठंडी हवाएं करके एक गाना था, उसके रिकॉर्ड में मिला।
2: अच्छा।
0: एंड शी वाज सो सिंपल, मतलब लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, क्या है नहीं है। लेकिन जब मेरा पहला गाना गाया तो मेरा बहुत मेरा भाग ही चमक।
2: क्या बोल कैसे उस गाने के?
0: घर आजा घिरा है।

0: तो शुरुआत हुई आरडी साहब की और उसके बाद
1: अब उसके बाद मैं उस गीत की बात करना चाहूंगी जिसे हमारे जो श्रोता है वो दीवानों की तरह चाहते हैं, और उसमें आरडी बर्मन साहब ने ऐसा संगीत दिया है और ऐसा मधुर गीत है, आप समझ रहे हैं, जिसमें वो रेल लगातार चल रही है रेलगाड़ी और उसके साथ फिल्म किताब का वो एक जबरदस्त गीत है स्वयं आरडी बर्मन साहब की आवाज में। आइए वो गीत कैसे बना, उस गीत से जुड़ी यादें क्या थी, इसको सुनते हैं। आरडी बर्मन साहब के साथ गुलजार जी हैं और हैं आशा जी।
2: आप सबको तो गवाते हैं
3: जी,
2: जब आप खुद गाना गाते हैं तब मैंने देखा है कि आप क्या क्या करते हैं। कहते आज नहीं गाऊंगा, मैं कल गाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं परसों गाता हूँ, परसों आएंगे तो

0: कहेंगे मैं नर्सों गाता हूँ। अच्छा छोड़ दे, तू भी मत गा, आज कल करते हैं, परसों करते हैं।
1: बिल्कुल इसी गाना तरह की हरकत है आयशा जी, वो भी इसी तरह की एक फोक सी धुन है इनकी, मतलब गाने की रेंडरिंग पर बहुत कुछ मुनसर है
0: जी।
1: मतलब नॉर्मल गाना जिस सिचुएशन के, जिस तरह से आपने एक गाना है इसी को किसी और आवाज में गा लो और किसी और तरह से गा लो, तो वो रेंडरिंग उसके बदल दीजिए तो गाने का कैरेक्टर बदल जाता है। ये बात मुझे पंचम ने समझाई थी और बताया था, और मैंने वो घंटी इसी के गले में बांध दी थी कि आप गा के बताओ। वो तो पिक्चर में भी इन्होंने गाया, वो गाना किताब फिल्म में है, धन्नो की आंखों में। वो नॉर्मली कोई सिंगर गा नहीं सकता, या नॉर्मल सिंगर नहीं गा सकता, यूं के लिए
0: ज्यादा बेटर है।
1: उस गाने को कैरेक्टर मिला सिर्फ उस रेंडरिंग से।
0: उसमें एक गिटार का जो पीस है,
1: वो भी एक एक्सपेरिमेंट है इनका, इन्हीं से पूछे बताएंगे।
2: ये मैं अमेरिका में था और वहाँ पे एक गैजेट जैसा है, उसको फ्लेंजिंग कहते हैं, फ्लेंजिंग।
1: अच्छा,
2: तो वो मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि दिस कैन चेंज अ कैरेक्टर ऑफ बिहेवियर ऑफ, जैसे गिटार में अगर वो लगा दीजिए तो अलग ही साउंड करेगा। तो हमने वो खरीद कर लिया और इधर आ गए। वो सुनने में थोड़ा बेसुरा जैसा लगता था, सब लोग हंसते थे क्या लेके आए, इट्स अ नॉइज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनीथिंग सिंथेसाइज्ड साउंड जो अच्छी तरह अगर यूज किया जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही करता हूँ, काफी म्यूजिक डायरेक्टर करते होंगे, लेकिन अच्छी तरह यूज किया जाए तो बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन लोग खराब तरीके से
1: भी, मेरा ख्याल है वही एक इंस्ट्रूमेंट,
2: वही
1: मेजर या मेन इंस्ट्रूमेंट वही था,
0: वही
1: और तो कुछ भी नहीं।
0: उसी के ऊपर
2: कैसा गा रहे थे हम,
0: क्या
2: चलिए गाना सुन के देखते हैं।

0: फिल्म किताब का जो गीत श्रोताओं ने इस कड़ी में सुना, मनीषा जी आरडी साहब की प्रयोग धर्मिता यहाँ देखने को मिलती है। और अब हम बात करेंगे उनके एक नॉन फिल्म एल्बम की। आशा भोसले, गुलजार साहब और आरडी बर्मन ने मिल करके ये एल्बम बनाया था, दिल पड़ोसी है।
1: और दिल पड़ोसी है दरअसल हमारी भी दिल के बहुत पड़ोस में रहता है, बल्कि हम तो कहते हैं कि दिल में ही रहता है। इतना सुंदर एल्बम है, क्या बताएं, इसको तो जितनी बार सुना जाए उतनी
0: इस एल्बम के दो वॉल्यूम है, जितने भी गाने हैं हर गाना अलग है, हटके है, उस गाने का रिदम पैटर्न देख लीजिए, अलग है
1: जी। तो आज कौन से वाले गीत का जिक्र है जिसकी कड़ी हम सुनवा रहे हैं?
0: जी जी, इसमें गुलजार साहब का लिखा हुआ वो गाना है जिसमें बांसुरी की बात है।
1: अच्छा।
0: बांसुरी को एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा है। सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना,
1: क्या बात है। ये तो बहुत ही सुंदर कड़ी है इस श्रृंखला की, तो आइए श्रोताओं सुनते हैं।
2: दिल पड़ोसी में आप गाना?
3: हाँ, मैं यही कहने वाली थी।
2: कौन सा गाना?
3: सातों बार बोले बंसी,
2: इसके बारे में तो गुलजार बताए।
4: सातों बार बोले बंसी, एक ही बार बोले ना, तन की लागी सारी बोले, मन की लागी बोले,
3: बोले
4: ना। ये गाने में खास बात ये है कि बांसुरी को टोटल परसोनिफाई करके देखिए आप।
3: हाँ।
2: कैसे?
4: जितनी फूंक तन पे लगती है उतनी बोलती है, अंदर की बात नहीं बताती है। सुर उसके साथ हैं, सातों बोलते हैं, जो चुप रहती है जिस बात पे वो नहीं बोलती।
3: हाँ।
4: उसमें खूबसूरत बात सिर्फ यह है कि उसे परसोनिफाई करके देखिए किस तरह से वो उठ के कृष्ण के मुंह लगती है, मुंह लगी हुई है।
3: हाँ।
4: मुंह चढ़ी हुई है। और वो सारी बात कहती है, एक जो उसका अपनापन है जो अपने पास रखती है वो चुप है, जो वो नहीं बोलती, वो सात सुरों के अलावा है। उसके सारी इलिटरेशन जितनी है वो बांसुरी के साथ परसोनिफाई करके देखिए आप।
2: ये गाने में थोड़ा सा लयकारी भी किया था, सरगम भी किए थे, बड़ा अच्छा था मतलब।
3: और इसमें एक बहुत अच्छी थी कि बांसुरी साथ में बोल रही है और आवाज भी आ रही है।
4: हाँ।
3: तो समझ नहीं आता कि बंसरी बोल रही है कि राधा बोल रही है।
4: जी हाँ, बस वही तो उसमें पर्सोनिफिकेशन है सारी की सारी, जैसे फूंक फूंक के बोलती है
3: जी।
4: अब वो फूंक से ही एक्चुअली बोलती है बांसुरी।

0: क्या बात है, प्रीत की पीड़ा जाने मुई, छाती छेद पड़े।
1: क्या बात है,
0: उठ उठ के फिर मुंह लगती है कान्हा संग लड़े। बांसुरी की इस बात को सुन करके मनीषा जी
1: कुछ और सुनने का मन रहता है क्या?
0: जी जी जी, जी। लगता है इसी अनुभूति के साथ रह जाएं।
1: जी हाँ, तो अब हम यहीं रह जाते हैं श्रोताओं, आपके साथ इन्हीं स्मृतियों में हम भी खोए हुए हैं और आगे बात नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। इसी तरह के मधुर कार्यक्रमों को लेकर एक बार फिर हम लौटेंगे। अभी इस वक्त तो दीजिए अपनी मित्र मनीषा जैन
0: और जयंत पात्रीकर को इजाजत। नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वासना फिल्म का ये गीत।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की?

0: सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई शंकर जयकिशन ने। और श्रोताओं, इस गीत के पहले आपने संगम फिल्म का गीत सुना था, उस गीत में भी तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस वक्त आप सुन रहे थे शिकार फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, फिल्म फर्ज का गीत आपने सुना।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में, वर्मा मलिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, यही थी आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

संस्कृत भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai। विविध भारती की सुर लहरियों की खनक आ चुकी है श्रोताओं, आपके आंगन में लेकर सुरीला सफर, जहां हम और आप मिलकर गीत संगीत का ये सफर तय करते हैं। तो आज भी थोड़े खट्टे मीठे अनुभवों के साथ गुजरेगा ये सफर, सुरीला सफर। हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने पढ़ी ली है आज की इबारत टेक्स्ट और उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भी भेजे हैं। तो हमारे रेडियो श्रोताओं के लिए एक बार फिर आज का ये टेक्स्ट या इबारत कह लें पढ़ देते हैं। राजस्थान की वो मखमली रात, रेत में पानी सी लहर, चांदनी ने चंदा से कहा, केसरिया बालम थाने नैना में रमा लूं, चल मेला देखूंगी, सोना चांदी मीनाकारी के जेवर सब खरीदूं, पहनी माथे की रखड़ी सात रंग की चुनर, तो देख बींद ने कहा, खूब लगती हो, लगे होरी आई है, जहां जहां मैं जाती हूँ गुड़िया गुलाबी पत्थरों महलों की अटारी ऊंट की सवारी सब जैसे नैनों में बादल, सच इनके बिना जीना लगे, पीतल की गगरी नारी हाथ न लगाना, पानी का मोल जानती भी है। बींद बोला, अरे बींदनी अरे दिले नादान, ये आरजुओं का शहर है, जो आएगा वही समझ पाएगा। तो श्रोताओं ये थी आज की इबारत या कह लें टेक्स्ट। रेगिस्तान की बेशुमार खूबसूरती को अपनी आगोश में समेटे प्रांत राजस्थान ने श्रोताओं जहां ऐतिहासिक धरोहरों को समेटा है, वहीं यहां लगते मेले, यहां की लोक संस्कृति कला और सुंदर वन्य जीव राजस्थान के कुंदन हार की तरह हैं। तो आज राजस्थान की बातें, रेत की बातें, जी हां, जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो नमक का रेगिस्तान भी है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और ये किन अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये आपको बताना है श्रोताओं। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं आज की जो ये इबारत है उसके विषय में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी की सौंधी महक लोक संस्कृति की रंगत और प्रेम की मधुर चुवन को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए है चांदनी, केसरिया पालम, रंग बिरंगी चुनर, मीनाकारी के गहने और रेगिस्तान की मखमली रात मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो लोक रंग स्वयं शब्दों में उतर आया हो। बींद और बींदनी का सहज संवाद केवल प्रेम नहीं बल्कि उस जीवन दर्शन को भी व्यक्त करता है जहां पानी की हर बूंद, हर परंपरा और हर भावना अनमोल है। ये इबारत राजस्थान की गलियों, महलों और रेत के धोरों के बीच ले जाकर प्रेम संस्कृति और स्मृतियों के रंगों से सराबोर कर देती है। जी हाँ, और इनके बारे में आपको लिखना भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश हमें रेगिस्तानी रेत के टीलों की ओर ले जाएगा और उसके मखमली स्पर्श को अनुभूत कराएगा। रेगिस्तान का सर्द आसमान, मखमली रेत और उस पर चांदनी की चादर ओढ़े थिरकते पानी की लहरें, ये किसी सम्मोहन से कम नहीं। चांदी से चमकती रेत के टीलों के बीच बनी पानी की लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई मखमली कविता लिखती हो। रेगिस्तान की रातें जितनी शांत होती हैं उतनी ही मखमली रात के सन्नाटे में जब पूर्ण चंद्रमा की किरणें पानी की सतह पर पड़ती हैं तो पानी की हर एक लहर मोती से चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो रेतीले समंदर में सितारों की बारात उतर आई हो। क्या ही बात है श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल सही कि रेत की जो सुंदरता है और रात जो राजस्थान की होती है, रेत की रातें जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। इस बारे में हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं, और अगर ऐसा कोई अनुभव आपके पास है, आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ के बारे में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। और रात के ही बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रेगिस्तान में मखमली रात एक रहस्यमय मौन, साइलेंस ऑफ डिवाइन के रूप में है जहां सांसारिक कोलाहल शांत हो जाता है, जो प्रकृति के शांत, कोमल और निश्चल

दर्शाता है। रेत पर पानी की लहर, हवा द्वारा बनाई गई लहरें, ईश्वर की इच्छा डिवाइन विंड के बहाव का एक रूप है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से बहते रहने की प्रेरणा देता है। ये दोनों वाक्यांश एक संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं कि मनुष्य का मन रेगिस्तान की मखमली रात की तरह शांत होना चाहिए और रेत पर पानी की लहरों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। रेत कठोरता और लहर तरलता का मिलना जुलना द्वैत को मिटाकर अद्वैत की ओर ले जाता है।

बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा है। डोर फिल्म का ये गीत था करसन सरगतिया और मीर अली हुसैन की ये रचना थी, सलीम सुलेमान का संगीत था। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज के गीतों को पहचानना है, शब्दों को पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हमें राजस्थान के रेगिस्तान की सैर आज की इबारत करा रही है, तो गीत भी उसी के अनुसार होंगे। चांदनी ने चंदा से कहा, तू चंदा में चांदनी की सरिया बालम पिया तो से नैना लागे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं पीतल की मुरी गागरी, और भी कुछ गीत इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं, पहचाने हैं। एक और श्रोता ने दिले नादा ये गीत पहचाना है। एक और श्रोता है सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ये गीत

सुरीले सफर में हो सकता है शामिल। एक श्रोता और लिखते हैं कि राजस्थान की खूबसूरती तब देखने को मिली जब मैं अपने परिवार के साथ जैसलमेर घूमने गया। सचमुच राजस्थान की खूबसूरती अपनी समृद्ध संस्कृति, रेगिस्तान और शाही आभूषण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के थार जैसलमेर मखमली रेत का अनुभव होता है। चांदनी रात में जब पूर्णिमा की किरणें इन रेत के टीलों पर पड़ती हैं तो ये भी सोने चांदी की तरह चमक उठती हैं। केसरिया रंग राजस्थान के शौर्य, त्याग और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के पारंपरिक परिधानों जैसे साफा, लहरिया और बंधेज में इस रंग का प्रयोग होता है। राजस्थानी आभूषण अपनी बारीकी, नक्काशी और भारी डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं सिर से लेकर पैर तक चांदी और सोने के गहने पहनती हैं, जिनमें रखड़ी, माथा, गला, बाजूबंद और भारी पायल प्रमुख हैं। ऐसे चांदनी रातों और मखमली रेतों पर ऊंटों की सवारी करने का अलग कौतूहल है। तो क्या आपने ऊंटों की सवारी की है तो हमें जरूर लिख भेजिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आइए चलिए मित्रों, चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में और आज दो बूंद पानी और रेशमा और शेरा के गीत की धूम होगी। तो जी हाँ, देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत होते हैं। वैसे गीत की जहाँ तक बात होती है तो कविताएं भी याद आती हैं। चेतक कविता क्या आपको याद है और ये किस पर लिखी गई थी तो आप जरूर बताएं। और कौन कौन से किले आपने देखे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है।

आप सुन रहे थे वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये किसकी रचना थी। वैसे तर्ज थी SN त्रिपाठी की, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थीं, और आपको राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी बताना है कि कौन सा है श्रोताओं, और क्या आपने दाल बाटी चूरमा और घेवर का स्वाद चखा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो राजस्थानी रंग छा जाएगा, ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किले इस राज्य में मिलेंगे। शौर्य पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। ये राज्य तभी तो इसे कभी भी जीता नहीं जा सका, या फिर इस पे अलग तरीके के किले नहीं बनवाए जा सके। वैसे बहुत सारे किले हैं वैसे यहाँ पर श्रोताओं, और तमाम बहुत कुछ है इबारत पढ़ने से पता चलता है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की इबारत में मेरे रंगीलो राजस्थान की महिमा का खूब बखान किया गया है। तो आप सब पधारो मारे धोरा रोर देश राजस्थान में। राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, परिधान, खान पान और वहाँ की भाषा बहुत मीठी है। व्यंजन में चूरमा बाटी, गत्ते की सब्जी और कैर सेंगरी की भाजी का क्या कहना। मारो राजस्थान सबसे निरालो, जयपुर की चुनरी का क्या कहना, ऐसा है मारा राजस्थान। धोरा की धरती, अब तो प्रकृति भी यहाँ खूब मेघ बरसा रही है। और गीत को भी इन्होंने चुना है, तू चंदा मैं चांदनी, पीतल की गागरी। एक और श्रोता लिखते हैं, कहते हैं जीवन में एक बार जरूर कश्मीर जाना चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में एक बार राजस्थान भी जाना चाहिए। मैंने भी सपरिवार एक बार राजस्थान के दर्शन किए हैं, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। खास तौर पर मुझे राजस्थान की रेत के दर्शन करने थे, और कई वर्षों की इच्छा पूर्ति हुई। जैसलमेर में समुद्र में जहाज पर चलते समय जिस तरह चारों ओर पानी ही पानी दिखता है, वैसे ही यहाँ चारों ओर सिर्फ रेत दिखती है। एक नया अनुभव प्राप्त होता है, रेत पर जीप से घूमा जाता है, घूमते हुए इक्का दुक्का घर भी दिखते हैं। मैंने जीप रुकवाकर एक घर के अंदर जाकर उन लोगों के रहन सहन, भोजन इत्यादि के बारे में जाना। जी हाँ, और इन्होंने आगे भी बहुत लंबी चौड़ी इबारत लिखी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत सुनना, संगीत को महसूस करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी एक ही धुन किसी के लिए सिर्फ संगीत होती है, और किसी दूसरे के लिए एक याद या भावना या एक कहानी की तरह होती है। आपको कलाकार पहचानने हैं श्रोताओं, और फिल्म

संध्या और प्रशांत पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी सेहरा, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वीर दुर्गादास का, आपसे गीतकार पूछा था। जी हाँ, आपने ठीक लिखा है, भरत व्यास का लिखा नगमा था, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं एक महीना श्रोता लिखती हैं कि एक महीना जोधपुर में मैं रही थी, तब जैसलमेर में घूमी थी। वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ की रंग बिरंगे बाजार ने बहुत मनमोहा था। बहुत तीखा खान पान है वहाँ के पकवान, घेवर, मावा, कचौरी, मिर्ची पकौड़ा, गट्टे की भाजी का मजा लिया था। जी हाँ, आपने रंग बिरंगे बाजार की बात की है श्रोताओं, तो राजस्थान में आप क्या बता सकते हैं मीना बाजार कहाँ लगता है, तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं, हम जब छोटे थे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब राजस्थान गए थे मामा जी की बारात में। वहाँ का तापमान, पानी का स्वाद, तीखे भोजन की विविधताएं, अनोखी वेशभूषा, रेगिस्तान की गर्म रेत और कुछ विशेष स्थानों की याद अब तक मन मस्तिष्क में अंकित है, जिसमें मुख्यतः चामुंडा देवी मंदिर, पुष्कर नाथ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, जहाँ यहाँ कौन सा मेला लगता है ये अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने इस मंदिर की बात की है। मंदिर के दर्शन भी किए और देवी के दर्शन किए और चमकीले पत्थर अब तक सहेज कर रखे हैं। जी हाँ, आपने लाए होंगे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, घूमर कलबील या नृत्य, भवाई नृत्य राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य, और दाल बाटी चूरमा, के सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी और भी बहुत से लोकप्रिय व्यंजन हैं यहाँ के। जी हाँ, तो क्या आप श्रोताओं राजस्थान का कोई सुंदर सा पंछी बता सकते हैं? एक और श्रोता लिखती हैं कि रेगिस्तान में मीलों तक फैले रेत के टीले जिसे धूर कहा जाता है के साथ साथ चट्टानी पथरीले मैदान भी शामिल हैं। थार में कई खारे पानी की झील भी है। सब आप ही बता दे रहे हैं श्रोताओं, तो फिर बताइए खारे पानी की कौन सी मशहूर झील है ये भी आप बता दीजिए, जिसमें, जी हाँ इन्होंने लिखा है लेकिन मैं ये आगे नहीं पढ़ूंगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि राजस्थान का सबसे प्रमुख और राज्य नृत्य घूमर है, इसे नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे कलबेलिया, तहताली, भवाई और गैर। राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य घूमर है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हालांकि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य भी प्रचलित हैं।

इस गीत में श्रोताओं एक दुल्हनिया हैं जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से। राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नजर आती हैं हेमा मालिनी श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीले सफर जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई। रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मोरी गागरी और मंगवा दे, और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहाँ के लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाए। जहाँ लोकल ड्रेस जहाँ की भी हम घूमने जाते हैं वहाँ की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हों तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें ज़रूर लिखें, और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा, जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखती हैं कि आज सुरीला सफर में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है, महिलाएं आज भी हाथों में सफेद चूड़ियां पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति कितनी।

आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश से, जहां छोटी छोटी छतरियां दिखाई गई हैं श्रोताओं, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। कुछ हमने सवाल आपसे पूछे थे सोने की मीनाकारी के और कुंदन या और भी जेवरों के, तो खास अगर बात की जाए सोने की मीनाकारी और कुंदन के जड़ाऊ जेवरों की, तो बीकानेर बड़ा ही प्रसिद्ध है यहाँ का और इन्हीं चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे लाख की चूड़ियों का भी कारोबार बहुत बड़ा होता है राजस्थान में, तो क्या इस शहर में आपने कुछ खरीदारी की है? ये लाख की चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं राजस्थान में ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है, लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम हैं वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे एक श्रोता ने, और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सर्दियों में खास करके वहां साइबेरियन पक्षी आते हैं, चार महीना बसेरा करते हैं, हमें ये नजारा देखने का मौका हर रोज मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन जरूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती है, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांद जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चुनर के रंग, महल, अटारियां सबके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती हैं लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज को, इस परंपरा को हम सबको बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारतीय कलाकारों की जो कलाकारी है बड़ी ही कम अब देखने में आती है। और पुतलियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे जयपुर में लगता है मीना बाजार।

कैफे आजमी का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना मैन पुरुषोत्तम की आवाजों में दो बूंद पानी फिल्म से, जो सिमी ग्रेवाल और सिखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छतरियां स्मारकी गुंबद मौजूद हैं, हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी सीकर जिले रामगढ़ में है माना जाता है। इसे सेठ रामगोपाल पोद्दार की छतरी के नाम से जाना जाता है। पंचकुला की छतरियां जो है वो बड़ी ही प्रसिद्ध है। श्रोताओं, आप इसके बारे में भी जरूर देखिए क्योंकि बहुत बड़ी छतरी है और राजस्थान की सबसे बड़ी छतरियों में मानी जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक कविता मैंने पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत शूरवीर बहादुर योद्धा थे वो। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे तो चेतक खुद गंभीर रूप से घायल था, तब उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ, और ये मेला बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहाँ तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है। खासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आप को बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था। जी हाँ, थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात पंजाब और आगे भी फैला हुआ है, तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियां हैं, आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें लिखें कहाँ की ये कठपुतलियां हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमति और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नजर आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर जिले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाजार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाजार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाजार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, इस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अनमोल देन, जिसे भारत ने नहीं आज पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। इसे कई सारे नए नए नाम दे दिए गए हैं और उन नए नामों के साथ भी योग अखिल विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। योग को कई लोग योगा भी कह देते हैं, परंतु योग तो योग है जो संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसे? हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को और हमारे प्रत्येक अंग को अपने आप से एक दूसरे से जोड़ देना, यही युज है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो युज का अर्थ होता है जोड़ना। आपको आपके आध्यात्म से जोड़ देना ही योग है, और योग मनुष्य की प्रकृति और आत्मा को एक साथ जोड़ देता है। भाग दौड़ भरा जीवन है और इस जीवन में योग का महत्व अद्भुत है। योग के सूत्रों को मुख्य रूप से योग सूत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी। इस योग सूत्र में 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के नियम, साधना, ध्यान और जीवन में संतुलन

बनाने के उपाय बताए गए हैं। इसमें अष्टांग योग का वर्णन भी मिलता है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं।

योग का इतिहास सहस्त्रों वर्ष पुराना है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, भागवत गीता में योग का उल्लेख मिलता है। पहले योग का उपयोग ऋषि मुनि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए करते थे। धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रचार हुआ और आजकल लोग योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। योग करने के अनेकों लाभ हैं। इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है और लचीला बन जाता है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। योग रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी कई सारी समस्याओं को नियंत्रित करने में भी योग मदद करता है। योग से कई सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। अब योग से हम किन किन बीमारियों से या किन किन समस्याओं से बच सकते हैं या उनमें लाभ मिलता है, उनमें से कुछ अगर कही जाए तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, तनाव, चिंता, अनिद्रा, पीठ दर्द, गठिया, अस्थमा, पाचन संबंधी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से योग हमें बचा लेता है।

योग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मन को शांत करता है और शरीर को लचीला बनाता है। आज के काल में सभी मानसिक परेशानियों से भी उलझे हुए हैं। हर रोज एक नई समस्या समक्ष आन खड़ी होती है और अगर हम योग की साधना करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाता है और कई सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, जिससे हम अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट यानी हम अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं और बहुत सरलता से कई बड़ी बड़ी परेशानियों को निपटा सकते हैं। हालांकि कई सारी बड़ी बड़ी गंभीर रोगों के लिए कहा जाता है कि केवल योग पर निर्भर ना करें, परंतु डॉक्टर की सलाह, उचित इलाज के साथ अगर योग किया जाए तो लाभ अधिक मिलता है। विद्यार्थियों के लिए तो योग अति आवश्यक है, इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग हमें स्वस्थ, अनुशासित, सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और दूसरे को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो कौन कौन करेगा योग, आज से विचार कीजिए, योग में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपकी धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन के प्रत्येक क्षण को बहुत सरलता से जीने की राह देता है। योग रोग निरोध करता है।

0: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
3: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
4: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
5: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
5: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
6: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
5: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
7: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
5: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
7: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
5: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
8: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
5: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले

0: अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढला उपेन अय्यर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा, हसर जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्जी, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमें।

0: तीन देवियां फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में, एस डी बर्मन की तर्ज थी, मचरू सुल्तानपुरी के बोल थे और इस गीत के पहले श्रोता परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलिल चौधरी का संगीत था। सदाबहार नगमे कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01:30 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में। कहीं धूप खिली है श्रोताओं, कहीं बादलों के डेरे हैं। दोपहर के इस समय कहीं आराम और गपशप, तो कहीं कुछ कामकाज की मसरूफियत। तो चलिए आपके बीच विविध भारती के गीतों का ये अफसाना जरा हम भी छेड़ देते हैं। देखिए मन चाहे गीत कार्यक्रम का ये गीत कहीं आपकी पसंद का गीत तो नहीं? सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

शोर मचाए शोर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़, खालापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्रे इसी गीत को सुनना चाहते थे, अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से, और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सेजल की ये फरमाइश थी।

ये गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल की तर्ज थी श्रोताओं। इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंद संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाहा बीकानेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या, मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

तुझे पुकारे तो मैं लब खोलूं, क्या जीना और क्या मर जाना ऐसा होता।

जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो, अरे रानी माँ से मुझको भी

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी मुकेश की आवाज़ों में, आनंद बख्शी की बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्बल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार, नसीन परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा, हिना कौसर, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत।

मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये, और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी। इट्स मस्ट, कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
3: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला। वाह, बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है? क्यों, यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्स पर पेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोगों ने। आप लोग बहुसंख्यक काले लोगों के पैरों में बेड़ियां डालकर सारे देश को लूट रहे हैं। मार खाते खाते दीवारों से लग गई है पीठ हमारी, लेकिन लेकिन जिंदा रहने की खातिर अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो क्या ये अन्याय है?
2: 100% अन्याय है।
0: जुडो, इस तरह काम नहीं चलेगा, इसके लिए खास इंतजाम करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे मुंह नहीं खुलता।
2: यस सर।
0: बोलिए, कुछ तो बोलिए मिस्टर मोलाइज, नहीं तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा। आग की तरह लाल दो सलाखें आपके बदन के कुछ खास हिस्सों पर तबाह कर रखी जाएंगी। कुचला जाएगा उन हिस्सों को सलाखों से। अब आप समझ ही रहे होंगे कि वो नजारा क्या होगा।
1: आप लोग खुद को शिष्ट समझते हैं, शिष्टाचार का दम भरते हैं, लेकिन लेकिन जी, जंगल के पशु भी शर्माते हैं आप लोगों के व्यवहार से।
2: सर, मैं रेडी हूं।
0: ठीक, देन स्टार्ट।
2: कहिए, फिलिप्स का खून किसने किया? बताइए, कब खून किया, कहां किया?
1: नहीं मालूम, नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम,
2: नहीं मालूम, नहीं मालूम।
0: बोलिए, बोलिए, अरे कुछ तो बोलिए ना। ये तो बेहोश हो गया, लगता है सहन शक्ति बहुत ही कम है। होश मिलाओ इसे, बाद में फिर कोशिश करेंगे।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गर्म करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मोलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए हैं।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर

0: के रंग भी सफेद हो जाए।
1: सुन रहे हो जुडू, मिसेज मोलाइज क्या फरमा रही है?
2: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
3: अच्छा मान लीजिए अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेज मोलाइज?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
2: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
1: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
1: यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं क्या आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
1: हाँ, बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं, खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
4: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
1: ये कौन बोले? किसी युवती की आवाज लगती है।
0: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
1: जरा उसे बुलाइए।
0: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
1: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए अब जरा हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
4: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
1: क्या नाम है तुम्हारा?
4: जिनी पैराम्बा।
1: क्या करती हो?
4: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
2: सर लगता है इसे कहीं देखा है।
4: कहीं सड़क बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
2: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
1: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी।
2: हाँ। वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी? क्यों, गई थी ना?
1: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
4: जी हाँ चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
1: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
4: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
4: जी, मेरी?
0: अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
1: प्लीज मिसेस मोलाइज, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
4: आप कहना क्या चाहते हैं?
1: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ मेरे साथ आओ।
0: नहीं, वो क्यों जाएगी?
1: ओहो डरने की कोई बात नहीं है।
4: मैं कहां जाऊंगी?
2: मेरे साथ?
0: नहीं
2: सर, मैं ये कह रहा
1: हूं। जिडू फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
0: नहीं वो नहीं जाएगी। जिनी तुम अंदर जाओ।
1: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
2: सर मैं कह रहा था कि
1: जिडू जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे।
4: नहीं,
1: इट्स माय ऑर्डर।
4: नहीं,
1: चलो।

लगता है बाहर से मेरा तन सुलग रहा, अंदर से मेरा मन हर अश्वेत माओ के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा ला

0: की आग ज्वाला सी बन जाए, फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं, लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं। हाँ,
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाइज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: चीनी?
1: जी हाँ, चीनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं? धन्यवाद
1: मिस्टर मोलाइज। आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: जिनी?
1: जिनी को यहां क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहां?
2: तुम कैसे हो बेंच?
1: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूं जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
2: हाँ, बेंच, ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
1: इसे यहां क्यों लाए हैं? कहिए, कहिए, क्यों लाए हैं इसे यहां?
3: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
1: नहीं मालूम।
3: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है। लेकिन दल में कौन कौन थे ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस उतना ही बता दीजिए।
2: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
1: जी,
3: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
2: बेंच, ओ बेंच,
1: जी
2: बचाओ।
1: जी,
2: बेंच,
1: जी,
2: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
1: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या क्या कसूर है, उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, उसे क्यों लेकर आए हैं, बताइए।
3: सिर्फ लेकर ही नहीं आए हैं, अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
2: हाँ,
3: बता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
1: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। मिस्टर थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
3: सॉरी मिस्टर नोलैंड, आपकी वजह से, सिर्फ आपकी की वजह से
1: मिस्टर थॉमसन,
3: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
1: मिस्टर थॉमसन,

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेस, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलेस?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलेस, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद। आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते हैं।

0: दंडित कवि की मां ने प्रिटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: ने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंच, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंच?
1: कब? कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा

वो बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

18 अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलहेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया।

0: हमें अफसोस है मिसेस मुलाय, सब कुछ खत्म हो चुका है। बेंजामिन अब सिर्फ एक लाश भर है।
1: खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो। मैं केवल एक बार देखूंगी उसे, सिर्फ एक बार देखूंगी।
0: सचमुच मैं बहुत दुखी। लाश देने का ऑर्डर नहीं
1: है। ऑर्डर नहीं है साहब, मैं उसकी माँ हूँ। माँ, वो मेरा खून है। उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है। मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब।
0: Really? We are sorry.
1: बेंजी अपनी कविता की कापियां भी तू लेता जा बेंजी, ये सारी कापियां लेता जा, ये ले जा, ले जा।
2: मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का। मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी, और सबसे ज़रूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।
2: परभणी में तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: या और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे, और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
2: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था, और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े, लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था, तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी। उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, वहां पर जॉब करती थी। तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी
1: अपने मन का
0: कि
1: जियो।
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी दो बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी। हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी, और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड।
0: हाँ, और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया ऐसे ऐसी ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरे मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ उस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफकोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त, जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, मतलब विशेषता मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है।
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से
1: कितनी
0: है।
1: सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहां सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहां वो उनके रास्ते एक साथ हुए।
0: राइट।
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहां ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है? वो कोई एक मोमेंट था जहां ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला सांब जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी,
1: पहला कदम उनकी
0: पहला
1: तरफ से नहीं
0: कदम
1: आना था।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया, लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे, जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा,
1: तमाशा
0: इतना
1: बन
0: डर
1: जाएगा।
0: मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह,
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या प्यारी
0: तो
1: बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ ओके, तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं, खुल मतलब उतना सा, खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी है।
0: हाँ, सवाल
1: है?
0: आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या
0: ये?
1: है, राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूं। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है। तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने? बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूं। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई आते ये जो 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा ने भी, पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है वो उस विश्वास की वजह से है।
0: बहुत ही सुंदर घटना है ये जो किताब के नाम की घटना है, और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे, क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। चूंकि बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही, पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
1: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
0: जी।
1: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी यानी बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस होती थी, ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी, तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल। तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
0: बहुत सही,
1: ठीक है,
0: बहुत ही सही।
1: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था। और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे, तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कॉम्पिटिशन में वो थी, तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
0: वाह वाह, क्या प्रयोग।
1: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए। जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
1: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे। राइट, सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी ये एक प्ले था, छिन्न करके एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकायची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है, कि अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
1: किया है,
0: कामयाबी।
1: काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था। तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं और उस वक्त पापा की उम्र थी 23, 24 मतलब ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन्स होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड्स जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार, वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था और
0: और वो भी
1: पापा ने वो
0: पापा के
1: निर्देशित।
0: निर्देशन में।
1: तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को, क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय,
0: बिल्कुल
1: और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान, इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है,
0: हम
1: ऐसा
0: उस
1: मुझे
0: दौर
1: नहीं
0: की बात
1: लगता।
0: कर रहे हैं जब टेलीविजन उस
1: हाँ,
0: तरह से नहीं आया
1: नहीं
0: था,
1: आया था।
0: और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी
1: एकदम
0: और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही
1: करेक्ट
0: जाती हैं।
1: करेक्ट करेक्ट। तो ये प्ले था। उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था, इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे, वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था। पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया, अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट? तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर, जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरड़े को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था।
0: हो गजब।
1: इट वॉज इज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वॉज अ आउट एंड आउट कॉमेडी, और बहुत मजा आया लोगों को, और एक लक्ष्मीकांत बेरड़े जैसा कलाकार आया, पापा थे लक्ष्मीकांत बेरड़े थे, तो इट वॉज पिक्ड अप लाइक हाउ। उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे पांच छह बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे, और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले। मैं इसलिए
0: बिल्कुल
1: कहूंगी क्योंकि बहुत बारी ये बात आई भी है कि जब गोविंद निहलानी जी ने वो प्ले देखा, अगेन विजय तेंदुलकर जी ने उनसे कहा था कि तुम हैंड्स अप का प्ले देखो, बिकॉज उस समय निलानी जी अर्धसत्य का कास्टिंग कर रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर का हीरो है ये तो पता था, बिकॉज तेंदुलकर साहब ने ही वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि तुम ये प्ले देखो, इसमें ये लड़का है, ये बहुत अच्छा इंस्पेक्टर निभाता है, तो तुम देखो। तो इसलिए गोविंद जी गए, उन्होंने वो देखा प्ले, और उन्होंने पापा को इंस्पेक्टर के रोल में ही थे वो देखा, लेकिन उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
0: वाह।
1: और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
0: बिल्कुल
1: तो इसलिए वो हैंड्स अप, ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी, तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है, मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी, तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था, और ये मैं उस समय की बात कर रही हूं जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बंबई में।
0: हाँ जी
1: तो पापा स्कूटर पे जाते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए, और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके। और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका, तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे, उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है, कुछ अर्जेंट काम होगा, तो सॉरी सॉरी सर करके भेज देते थे। तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं, कि वो
0: वाह,
1: उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस, और उन्हें
0: क्या
1: कुछ नहीं
0: प्यारी बात है।
1: दिखता।
0: वाह, यहां भी गाने की जगह बन रही है, और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहां पर।
1: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है, मेरे महबूब में क्या नहीं,
0: वाह
1: वो
0: वाह वाह, क्या बात
1: वाला।
0: क्या बात क्या बात, सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत लंबी एक दिलचस्प बात हुई नाटकों को लेकर, और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं आपसे सुनना चाहता हूं।
1: ओके तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे।
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अवचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो,
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली, तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे,
0: किस
1: तो
0: इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो इसलिए उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और 2 साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और 1 मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था
0: आर्टिस्ट
1: कलाकारों
0: का।
1: के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत

0: सत्ती में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
1: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे. पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है. क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं, राइट?
0: बिल्कुल।
1: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से. और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है. तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना, उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला. और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे. हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्स अप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था. तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा. तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर. ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत. तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड.
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक कलाकार की ताकत यह है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता
1: सही
0: है।
1: बात
0: उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया।
1: राइट
0: लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
1: नहीं थी.
0: तो
1: नो,
0: पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए।
1: वो कैसे मिली इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी,
0: जी
1: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे. तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले, दुबले पतले से ऐसे थे. तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त. तो आप करोगे? उन्होंने कहा हाँ मैं करूंगा, नो प्रॉब्लम, चलो. मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं, तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने वो किया था. तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त. जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त. और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, यजतला लोकमान्य टिळक हा रामोश्या सारखा दिसतो. रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई. तो इस तरह से वो दिखता है. तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था. ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है. हाँ, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त. और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार, जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई. आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच.
0: बिल्कुल। राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए। और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया है कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया है। वो क्यों है?
1: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये एक उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 22 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य।

0: ने तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था रात से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब रात से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
1: जो मैं, कसर रह गई
0: जो
1: है,
0: कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
1: yes.
0: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी। अब जैसे होता है कि कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। 2 दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर 2 दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था एक महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकालकर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
1: ओके हाँ, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था, इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राज से स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं। हाँ? और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज कर अगर आप देखें। हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
0: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
1: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए।
0: यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: क्या बात है, गुलजार साहब के बोल।
0: ऑफ कोर्स
1: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी भद्रवाह है, FM 101 MHz पर समीन शाम के ठीक 5 बजे हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर हम पेश कर रहे हैं एक खास रेडियो रिपोर्ट। योगा न सिर्फ जिस्म को तंदुरुस्त रखता है बल्कि जहनी सुकून और मुस्बत सोच को भी फ़रोग देता है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे योगा डे की अहमियत, योगा के सेहत पर असरात और इस सिलसिले में मनाकिद तकरीबात की तफसील। रिपोर्ट तैयार की है सायर हुसैन ने, सुनिए ये खास रेडियो रिपोर्ट।
1: सेहतमंद जिस्म और पुरसुकून जहन और बेहतर जिंदगी के पैगाम के साथ आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। योगा को न सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती बल्कि जहनी सुकून और रूहानी इत्मीनानी का भी एक अहम जरिया माना जाता है। इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए भद्रवाह एडमिनिस्ट्रेशन ने आयुष के ताउन से एक योगा डे का प्रोग्राम मुनाकिद किया। ये प्रोग्राम भद्रवाह के लेक व्यू रिजॉर्ट में मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में ऑफिसर, स्टूडेंट्स, हेल्थ वर्कर्स और आम शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और योग को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने का अहद किया। भद्रवाह के खूबसूरत और पुरफिजा माहौल में मुनाकिद इस प्रोग्राम ने सेहत और वेलनेस का पैगाम दूर तक पहुँचाया। इस वक्त योग गुरु जो है वो आसन जो है वो शुरू कराने जा रहे हैं और लोगों को जो है योग के फायदे भी जो है वो बता रहे हैं।

योगा जो है वो शुरू हो गई है, लोग जो है वो जो योगा होती है वो करना जो है वो शुरू कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ स्कूलों के बुजुर्ग और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो बड़े इंटरेस्ट के साथ जो है वो योगा जो है वो कर रहे हैं।

समीर अब समाप्त कीजिए लक्की फिल्म से नगमा। नगमा निगार है समीर, मौसीकार है अदनान सामी और इस नगमे को गाया है उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल ने।

समीर नपेशे, एजेंट विनोद, फिल्म से नगमा। आवाज़ें हैं नंदनी श्रीकर, मौजिम रिजवान, शादाब फरीदी, अल्तमश फरीदी और शहाब साबरी की।

समीन प्रोग्राम में आगे आइए सुनते हैं हम है राही प्यार के फिल्म से नगमा। नगमा निगार है समीर, मौसिकार हैं नदीम श्रवण और गुलुकार हैं कुमार शानू अलका याग्निक।

आकाशवाणी बतरवा स्टेशन से समीन आप सुन रहे हैं फिल्मी मौसिकी प्रोग्राम में। आगे आइए सुनते हैं इतिहास फिल्म से नगमा। नगमा निगार है समीर, मौसिकार हैं दिलीप सैन, समीर सैन, और इस नगमे को गाया है अलका याग्निक, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह ने।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार।

समीन शाम 7:45 पर उर्दू में खबरें और ठीक रात 8 बजे वादी की आवाज़ प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किए जाएंगे।

सामीन रेखा खुलासा आज से लेकर रात 10 बजे तक रिले किए जाने वाले प्रोग्रामों का ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 89.0।

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੰਮੂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਿਲੇ ਦੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦੱਤਾ। ਲੈਫਟਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹੋਰੇ 12ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਗਲਾਇਆ ਜੇ ਯੋਗ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੀ ਵੱਖੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਕਰਨੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨੀਟ UG ਦੀ ਪੁਨਃ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗੇ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲੋਖੜਾ ਰੋਣੇ, ਬਰਖਾ ਦੀ ਫੁਹਾਰ ਪੋਣੇ ਅਤੇ ਆਂਧੀ ਝੱਖੜ ਝੁਲਣੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਖਜੂਰੀਆ।
1: ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹੋਰੇ 12ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਡਲ ਝੀਲ ਕਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯੋਗ ਸਤਰ 'ਚ ਜ਼ਾਰਾਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਹੋਰੇ ਇਸ ਪਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਰੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਗੀ ਕਿੱਠੇ ਜੋੜਨ 'ਚ ਯੋਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਯੋਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਅੱਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ
2: आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य को केवल बीमारी के अभाव के रूप में नहीं देख बल्कि शारीरिक मानसिक और भावनात्मक संतुलन के रूप में समझती है और यही कारण है कि हजारों वर्ष पुरानी भारतीय योग परंपरा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। जिस प्रकार एक पौधे को प्रतिदिन पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है उसी तरह मनुष्य के शरीर और मन को भी नियमित अनुशासन की आवश्यकता रहती है।
1: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਰਾਬੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਿਕਸ਼ਾ ਇਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਯੋਗ ਸਤਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਰ ਹੈ ਯੋਗਾ ਫੋਰ ਹੈਲਦੀ ਏਜਿੰਗ। ਜੰਮੂ 'ਚ ਤਵੀ ਦੇ ਕੰਡੇ NCC ਕੈਡਟਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗ ਸਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤੇ। NCC ਕੈਡਟਸ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੋਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ।
3: ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਜਸਟ ਸਪੋਰਟਸ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਸਭੀ ਕੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਲਨੈਸ ਕੇ ਲੀਏ ਬੈਸਟ ਹੈ।
1: ਰਿਆਸੀ 'ਚ NCC ਕੈਡਟਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਨਾਰ ਰੇਲ ਪੁਲ ਪਰ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। SDM ਦਰਮਾੜੀ ਤਾਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ।
4: दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हैं उसमें इस ब्रिज का शुमार होता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज है। यहाँ पर योगा करने का हमारा मतलब यही है कि हम यहाँ से ये बताना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान हमारा जो है दुनिया की हर फील्ड में तरक्की कर रहा है, हम किसी भी जगह जो है पीछे नहीं है।
1: उधमपुर के जिला प्रशासन आसिया उधमपुर के सुभाष स्टेडियम च अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उधमपुर प्रेम सिंह होरें आख्या।
5: सभी उधमपुर वासियों को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है इसकी बधाइयां हैं और शुभकामनाएं हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने भी उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को जो है मनाया। इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है बच्चों ने जो है और हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उन्होंने भाग लिया है।
1: डूडू बसंतगढ़ भी इस सरबंध कार्यक्रम का सिरिस्ता किया गया। SDM डूडू मनमीत कुमार और आख्या।
6: इस साल सब डिवीजन डुडू तहसील लाटी दूर दराज का पहाड़ी क्षेत्र में इंटरनेशनल योगा डे इन कोलैबोरेशन विद आर्मी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया जिसमें बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मेरा ये मैसेज रहेगा कि हर इंसान योग से जुड़े क्योंकि योग से आपकी शारीरिक और मानसिक तौर पर आप स्वस्थ होते हैं।
1: कठुआ के जिला खेल स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। DC कठुआ राजेश शर्मा ने आख्या।
7: जो आज का लाइफ स्टाइल है उसमें हमारा हेल्दी पार्ट तो बहुत कम रह गया, चाहे हमारी डाइट हो या हमारी जो एक्टिविटीज हो। तो योगा एक ऐसी चीज है जो हमारे पुराणों में भी लिखी गई है और एंशिएंट हिस्ट्री से चल रही है, तो हमें इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है और अपनी इस चीज को अपनी धरोहर को एक तो साथ रखें, इसको कायम रखें और इसकी मैक्सिमम बेनिफिट।
1: पुंछ जिले च भी सरबंध च कार्यक्रम आयोजित किया गया। DC पुंछ अशोक शर्मा ने आख्या।
8: एजिंग, जो जैसे जैसे हम एजिंग तरफ जाते हैं तो वहाँ भी हम एनर्जेटिक और यंग फील करें, ताकि डिजीजेज से हम अपने आप को दूर रख सकें। तो योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस साल का थीम है, हम इसको लेके चलें और हर कोई इसको डेली, जिसको दिनचर्या हम बोलते हैं, उसका हिस्सा बनाए।
1: रामबंज भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मतलब कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामबंज आयुष के नोडल अफसर डॉक्टर शकील अहमद और आख्या,
9: तो आई होप कि ये जो हमने आज के बारे में इनको कहा, ये कंटिन्यू करेंगे 365 दिन, क्योंकि योगा सिर्फ एक दिन का ये नहीं है इवेंट, ये 365 दिन का इवेंट है। आई होप कि लोग इसको फॉलो करेंगे।
1: सांबा ते राजौरी जिले था में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने दी खबर थोड़िया न। SSP रियासी मुकुंद टिबरेवाल और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रस्ते ते भवन आले इलाके का व्यापक सुरक्षा जायजा लैता। उन्हें सांझी छत का दौरा लाने के कन्नोकन्नी हैलीपैड ते आले दुआले दे इलाके च सुरक्षा सबंधी ईले ते हैलीकाप्टर सेवा सबंधी सुरक्षा तंत्र का जायजा लिया। इस मौके पर SP कटरा कामेश्वर पुरी ते CRPF दे अधिकारी ते और दुए सबंधी लोग उन्दे कन्ने मौजूद हे।
10: ए खबरां साडी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एदे अलावा तुसे खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो।
1: एक खबर तुस आकाशवाणी जम्मू पर सुना दे हो, तुन बाकी दी खबरें कन्ने सोनाली दत्ता।
0: अज पूरे जम्मू जिले च नीट UG दी पुनः परीक्षा कड़ी सुरक्षा ते प्रशासनिक इंतजामे कन्ने करवाई गई। पूरे जम्मू जिले च एक परीक्षा दे 27 केंद्र बने दे हे ते राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA दे दिशा निर्देशों मुताबक सबने इंतजाम किए गए हे। परीक्षा गी रमानदारी आले ढंगे सिर करवाने आस्ते परीक्षा केंद्रें पर पुलिस तैनात की गई ही, विद्यार्थियों की शारीरिक जांच भी की जा रही ही ते ट्रैफिक प्रबंधन समेत और इले भी लैते गए हे। ते परीक्षा केंद्रें च विद्यार्थियों के प्रवेश ते निकास आस्ते विशेष टीम भी तैनात की गई हियां। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें अज जम्मू खेत्रे दे बक-बक स्कूलें थमां 10वीं ते 12वीं जमात दे इस बरे अव्वल थार हासिल करने आले विद्यार्थियों गी पुरस्कार दित्ते। इंदे च जिंदा अज नीट दा इम्तिहान हा ओ इस कार्यक्रम च नहीं शामिल होई पाए, जिंदे थारें पर उंदे मापिओ ते शिक्षकें गी पुरस्कार दित्ते गए। इस मौके पर बोलदे होई डॉक्टर सिंह होरें आख्या जे इस गल दी खुशी है जे किश्तवाड़ ते बिलावर जने निक्के कस्बें दे विद्यार्थी बोर्ड दे इम्तिहान च अव्वल थार हासिल करारदे न, जेड़ा इस गल की दर्शांदा है जे खीरी दाके थमां नरेंद्र मोदी सरकार दे शासन च शिक्षा दे अफसर सबने गी बराबर मिला दे न। ए समारोह जिदा ना बिग टॉपर्स सेलिब्रेटिंग अकैडमिक एक्सीलेंस 2026 यानी पढ़ाई च सबने शा अग्गे रोने आला उत्सव हा, ओदा आयोजन 92.7 BFM इंडिया राय आयोजित किया गया हा। रियासी जिले दे सलाल जंगल इलाके च भीषण जंगल दी अग भटकी, जेदे कन्ने सुखे घा ते बूटे बद्दे तापमान ते तेज हवा दी वजह कन्ने पूरे जंगले च अग तेजिया कन्ने फैली गई। अग गी जंगल दे कन्ने लगदे इलाके तकर बधने कोला बचाने आस्ते जंगलात विभाग ते अग ते आपातकालीन सेवाएं दी विशेष टीमें गी मौके पर सद्या गया। जम्मू कश्मीर पुलिस गी उपरोतली दुए बरे पासपोर्ट सेवा 2025-26 आस्ते राज्य पुलिस लई संस्थागत प्रदर्शन पुरस्कार कन्ने सम्मानित किया गया। ए इनाम केंद्रीय विदेश मंत्री होरें नमी दिल्ली च पासपोर्ट सेवा दिवस दे समारोह दौरान दिता। इस मान्यता कन्ने पासपोर्ट दी तौले तस्दीक, नागरिक केंद्रित सेवा उपलब्ध करवाने ते सुशासन च बल दी उत्कृष्टता गी उजागर किया गया है। अप्रैल 2025 ते मार्च 2026 बिशकार जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1,64,000 शा मते पासपोर्ट सरबंधी सेवाएं च कार्यकुशलता, पारदर्शिता ते लोकें दे भरोसे गी मजबूत करने लई विभाग दी वचनबद्धता दा प्रदर्शन किया। ते मौसम विभाग ने कल 22 जून तक मौसम आम तौर पर बदलोखड़ा रोने ते कई सारी थारें पर एक या दो बारी बरखा पौने की पेशगोई की है। विभाग ने गर्ज चमक, ऐन गड़ा पौने, बिजली चमकने ते धूड़ आली अंधी चलने की भी चेतावनी दी है। इस बारे और जानकारी देंदे हुए मौसम विभाग के डायरेक्टर मुख्तार अहमद होरें आख्या,
11: ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर, हेल स्टॉर्म और उसके साथ साथ इंटेंस शावर्स भी अभी, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स कुछ एक मकाम पे, और बारिशें अभी करंटली चिनाब वैली, रजौरी, रियासी, उधमपुर इन सारे जगहों पे बारिशें हो रही है। तो ऐसा ही वेदर 22 तक रहने के चांस, नदी नाले खासकर जहां पे बारिशों के कारण काफी ज्यादा वाटर लेवल अचानक से बढ़ जाता है, तो इन सारे जगहों से थोड़ा सा परहेज करें।
1: अखीरच खास खास खबरें एक बारी पढ़ती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम च हिस्सा लिया। उन्हें आखिया जे योग असल मायने च दुनिया गी इकजुट करा'रदा ऐ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

0: पूरे जम्मू खित्ते च बड़े उत्साह ते जोश कन्नै मनाया गया। रियासी जिले च वैष्णो देवी यात्रा रस्ते ते भवन दे आले दुआले सुरक्षा ग्रिड की समीक्षा की गई। जम्मू जिले च नीट यूजी की भर्ती परीक्षा सख्त सुरक्षा इंतजामें ते प्रशासनिक तैयारियों के चलते रमानदारी आले ढंगे सिर संपन्न हुई ते मौसम विभाग ने कल तकर पूरे जम्मू कश्मीर च मौसम बदलोखड़ा रौने बरखा पौने ते अंधी झक्खड़ झुलने की पेशगोई की है। एदे कन्ने गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फसी चुके दा है जेदे शा बाहर निकलना मुश्किल गै नहीं नामुमकिन है। कल्ले तगर जेड़ा पाकिस्तान भारत दे पंजाब ते जम्मू कश्मीर च आतंकवादी भेजने दियां नापाक हरकतां करदा आवारदा हा, अज ओ आपूं चौने पासे दा मार चला करदा है। भारत ने पिछले बरे मई महीने आपरेशन सिंदूर चलाइयै एदे आतंकी ठिकाने गी भलेआं मलिया मेट कर दित्ता हा ते ओदे 100 कोला मते खतरनाक आतंकवादियें गी उंदे अशर तक पुजाया हा। ओदे बाद बलूचिस्तान च BLA ने मुनीर दी फौज गी खदेड़ियै उसी ओदी औकात दस्सी दित्ती ते POJK च जारी विरोध प्रदर्शनें च पाकिस्तानी फौज दियें जालमाना कारवाइयें पाकिस्तान दी दुनिया दे सामने पोल खोलियै रखी दित्ती ते इक ताज़ा घटनाक्रम च हुन रही सेही कसर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान दे अंदर बढ़ियै एयर स्ट्राइक करियै पूरी कर दित्ती है। आखदे भी हैं ना जे हत्थें ने दित्ती दियां दंदे ने खोलनियां पौंदियां न, यानी अपने कीते दे माड़े कर्मे दा फल इक ना इक रोज भुगतना गै पौंदा है। पिछले 78 बरे थमां पाकिस्तान ने जिस चाली अपने नजायज कब्जे आले जम्मू कश्मीर दे लोकें कन्नै धोखेबाजी कीती ते ज्यादतियां कीतियां ते अज उत्थे अपने जुल्मे दा नमां त्या लिखा करदा है, उन्हें बेकसूर लोकें दियें बददुआएं दा असर ते फल पाकिस्तान गी कन्नो कन्नी गै भुगतना पवै करदा है। बुनियादी अधिकारें दी मंग करारदे POJK दे लोकें पर जेड़ा कहर पाकिस्तान ने पिछले किश दिनें दौरान ढाया है, जिस चाली महिलाएं ते बच्चें समेत सैकड़े लोकें गी अपनी बंदूक दा शिकार बनाया है, उंदे मनुक्खी अधिकारें दी आवाज गी बंद करने लई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी गी आतंकी संगठन घोषित करियै ओदे कारकुने गी जेलें च डक्की दित्ते दा है, उनें भैड़े कर्मे दा फल अज अफगानिस्तान दे हत्था उसी मिला करदा है। तालिबान सरकार दे रक्षा मंत्रालय ने जंदे रोज ए ऐलान करियै पूरी दुनिया गी हैरान कर दित्ता कि ओदी हवाई फौज ने पाकिस्तान दे अंदर बढ़ियै आतंकवादियें दे बड्डे ठिकाने गी तबाह कीता है। अफगानिस्तान ने एह कार्रवाई बलूचिस्तान ते खैबर पख्तूनख्वा च कीती है, जिस चाली पाकिस्तान भारत खिलाफ साजिशां करदा आया है अज अफगानिस्तान खिलाफ भी ओ इस्सै कनीत कन्नै साजिशां रचा करदा है। अफगानिस्तान ने इनें ठिकाने गी बुराई ते भ्रष्टाचार दा केंद्र करार दिंदे होई आखेआ है जे इनें लोकेशनें सवां किश गलत इरादे कन्नै चलाई जा करदी खुफिया एजेंसियें दी मदद कन्नै अफगानिस्तान दे खिलाफ बड्डे आतंकी हमले दी साजिश रची जा करदी ही। अफगानिस्तान दी एह कार्रवाई छड़ा इक हवाई हमला गै नहीं सगुआं पाकिस्तान दी आतंकवाद दी फैक्ट्रियें पर हमला है, जियां मई 2025 च भारत ने आपरेशन सिंदूर दौरान POJK ते पाकिस्तान दे होरने हिस्सें च मौजूद आतंकी ढांचे गी तबाह कीता हा। भारत आंगर गए अफगानिस्तान ने भी अपना साफ संदेश दिता है कि ओदी कार्रवाई पाकिस्तान दी हकूमत या फौज दे खिलाफ नहीं छड़ी आतंकी ठिकाने खिलाफ ही। पाकिस्तान दी धरती पर रड़ी दी आतंकवाद दी फसल गी खत्म करने लई एह कार्रवाई कीती गई। ताजा जानकारी मुजब एह गल भी सामने आवारदी है जे इस एयर स्ट्राइक च रूस दे भलेआं अज्जै कल्लै दी किस्म दे ड्रोन ते होरने हथियारें दा इस्तेमाल कीता गया। पाकिस्तान च इक दे बाद इक आई दियें हुकूमतें कदें भी अपने आम लोकें दी भलाई बेहतरी तरक्की ते खुशहाली बक्खी ध्यान नहीं दिता। हुकूमतें दा सदा थमां गै कम्म करने दा इक्कै तरीका रेहा, भारत खिलाफ जहर उगलिए आम नौजवानें गी वरगलाओ, आतंकवाद गी सरकारी नीति दे तौरा पर इस्तेमाल करदे होई अपने नौजवानें गी ऐसी घुम्मन घेरी च फसाओ कि ओह अपने लेई खरे माड़े दा फर्क नहीं करी सकन ते जम्मू कश्मीर दे जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा करी रखे दा है उत्थें दे लोकें गी दबाइयै रखो। पर आखदे भी हैं ना जे लक्कड़ दी कुन्नी मते चिरै थोड़ी चुल्हे पर नहीं चढ़ी सकती ते POJK दे लोकें पर जुल्म ज्यादतियां आले भैड़े कर्मे दा फल पाकिस्तान गी अफगानिस्तान दे हत्थें चखना पवा करदा है। गल गुआंढियें दी च बस इन्ना गै, कल इक होर विशे लेइयै फ्ही मिलगे। जय हिंद।

0: तो सुना रहे हैं डोगरी च खबरां। अस आकाशवाणी दे जम्मू केंद्र थमां बोला रहे हैं। 6:30 होए न, आओ सुनचे कार्यक्रम देश सुआवां।
1: ये आकाशवाणी भद्रवाह है FM 101 MHz पर। समय शाम के ठीक 6:30 हुए हैं। अब पेश है उर्दू गज़लें। आगाज़ करते हैं आशा भोसले की आवाज़ में अहमद फराज की इस गज़ल से।

अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम उर्दू गज़ल। ये आकाशवाणी भद्रवाह FM 101 MHz पर। सामिन, थोड़ी ही देर में आप समाप्त करेंगे मरकज़ी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ मौजूआत पर आकाशवाणी के न्यूज़ सर्विस डिवीज़न NST की जानिब से खसूसी सिलसिला नशरियात, जिसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा, और उसके फ़ौरन बाद शाम 7:45 पर उर्दू में खबरें और रात 8 बजे वादी की आवाज़ प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। रिले का इंतजार कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट हैज रिलेंटलेसली बीन वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise, and of course the concept which has been reiterated time and again that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.
1: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव की किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
2: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्टअप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे, हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हमारा लास्ट ईयर का, अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%, सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली, और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में, 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था, तो लगभग हम मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम 100 बिलियन डॉलर का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर इज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी.
1: एब्सोल्युटली. सो मिस्टर चनॉय, डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम टू द मैन्युफैक्चरिंग sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
3: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
1: Yes.
3: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
1: Mm-hmm.
3: A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is that they've allowed self-certification.
1: Yes.
3: Right? For the common man, what does self-certification mean? It means if you're doing something, if you're applying anywhere, you can take a copy of your Aadhaar card and self-attest it.
1: Mm-hmm.
3: This was not possible in earlier regimes. You could take a lot of documents and self-certify them. If you were to file certain returns, initially you had to get it verified or something by someone. Now you can actually do it on yourself. The third thing is, I remember very clearly for manufacturing, and taking S.P. Sharma's point earlier, there were 1,947 compliances required and things to be filled by a particular company in the manufacturing sector over a period of year. Over the reforms, this is actually reduced. The same compliance was for a large company and for a medium and small company. So that is what has happened here. But I think you must see the reforms and the thing from the view of a street vendor to a large businessman.
1: Yes.
3: A medium scale person and a street vendor, because of the digitization and the bank accounts thing, has now got access to credit. This was not available earlier. So respect, trust, accessibility, and the opportunity to start a fresh business, as he mentioned, the startups.
1: Yes.
3: And as you talk about new businesses, MSMEs, to grow, they've allowed that by a simple change in the definition of the MSME thing. So now MSME has lost the fear of growing going forward.
1: Okay, so that flexibility is there, and that intent to make amendments whenever it is required, that we have been observing over the last 12 years?
3: Absolutely, and if you see, this is still work in progress. You see, we've revised three legal laws in the criminal space, the Evidence Act, the Indian Penal Code, and the Code of Criminal Procedure have all been, and we have the BNSS and BSA, and over 12,000 laws have been scrapped, 14,000,
1: yes.
3: Right? They've been scrapped, right? These are all things which are not there. You have looked at decriminalization, which I talked about earlier. So the fear of that going out. And the most important, and you started this conversation by saying, what are the two most important things that you've said? The first two most important things actually happened in 2014 and 2016, right? 2016 and 2017, right? The first one was the IBC, the insolvency code, because earlier companies could not, and the BIFR and the alternatives, they were graveyards of industry, not renewing kind of things. The second one, which is very important from a national perspective, which got implemented from the 1st of July 2017, was the GST, which removed multiple taxation and got it into one tax, made it very simple, and that reform is continuing. So it's been a progress. This year, for example, earlier this year, they introduced reduced GST rates on many sectors.
1: Yes.
3: And you're seeing, despite Trump tariffs, despite the war.
1: And it became a two-slab structure,
3: yeah,
1: much simpler.
3: No, nearing two slabs, not yet two slabs.
1: Yeah,
3: S.V. Sharma will differ from that. Yeah. But if you look at this, there have been growth rates.
1: Mm.
3: You know, people thought because of the Trump tariff and because of the war, Indian growth economy will be declining. But you saw the GDP numbers come out for last year and the projections for this year. And you see the current PMI index, it is showing growth going forward.
1: Yes.
3: So this is all a result of the reforms and the income tax assessment. All these are all positive steps there. Yes, something, always people will say something more has to be done, but that's a work in progress.
1: So Dr. Sharma, you know, we talked about how business entry has become much easier, how the permits, getting permits has become much easier. If you can throw a little bit more light on that, the National Single Window System, which has been launched, and the land records, how they have been digitized. You feel that all these digitization of the various aspects of business, they have brought in much more transparency and led to environment which is more harmonious, and there is less chances of disputes happening or corruption happening?
2: Yes, Sonuji, digital processes are very, very important for the ease of doing business, as now we are the largest digital economy actually. We are at the top in the world economic system. And our digital transactions are now more than 20 billion in a month. So the total number in a year becomes in more than 200 billion. So DigiLocker, I think, is a great breakthrough for these opting business processes. As I earlier mentioned, that procedures are coming down, compliances are coming down. As Mr. Shunai mentioned, that compliances, government has removed many compliances from the system and have simplified more than 42,000 compliances during the last 4-5 years. So all these developments, like the removal of compliances and simplification of the compliances, is supporting the ease of doing business, particularly the new and young entrepreneurs to come into the system.
1: Yes.
2: Now, when I go to some classes or the MBA classes for some guest lectures, then the students talk about the entrepreneurship.
1: Mm.
2: They want to know about the opportunities existing in the promising areas of the economy.
1: Yes.
2: Now, the entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur, to provide the jobs to the other people. So this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years, with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like, the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space, to move forward. And that is a great example of ease of doing business.
1: Yes.
2: Like the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses, and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India. Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
2: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business, that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
2: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
2: With a great confidence that yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned, that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
2: Our PMI is higher than any economy in the top 10 economies. like our services PMI, our manufacturing PMI, even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
2: System.
1: तो मिस्टर चनोय, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
3: सुनील जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है.
1: जी.
3: अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए, और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है. और साथ में, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे, और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए, तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है. वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछें कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट.
1: जी,
3: ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था.
1: जी.
3: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो.
1: हाँ.
3: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में. और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है, और देश के लिए बहुत जरूरी है. और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ये एक बहुत ही बुरी नजरिया से देखा जाता था. अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो.
1: बिल्कुल.
3: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में. अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया. और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के.
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक का सरकार का भी है, कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है.
3: बिल्कुल. आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था. जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था. अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपी किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे. पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है. पीपीए किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे. और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए. और उसके खास बात के रिफॉर्म्स थे, अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था. लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे
1: जी,
3: वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं.
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है. जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेज और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो. एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान. सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हरेक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है?
3: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी. और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कंपेटिटिव फेडरलिज्म है. पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे. तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं. उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर्स, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे. तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स एक्चुअली उससे सीख सकते थे. अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
3: उसको कंटिन्यू हो रहा है. तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा. 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है. हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का.
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है. डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन. ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है. जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल, एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है. और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ जीडीपी होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ जीडीपी। तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन ए रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे आरबीआई का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स हैं और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इंपैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
2: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है खास करके जो एमएसएमईज है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
1: Okay, another point, Mr. Chinoy, which I would like your, view on, that logistics, PM Gati Shakti, where they've taken a multimodal approach to physical connectivity. Then there is logistics data bank 2.0, the way the technology has been used, where you can just track real-time cargo, or there are so many reforms for faster custom clearances and stronger export support. How important are these for creating confidence in India as an investment destination, both for domestic and for the foreign investors?
3: So, Sunilji, you've talked of three different things, and I'll answer each one separately. So, first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, to be export, and Mr. Sharma talked about how exports have grown, a lot of our exports were import dependent. I mean, you take gems and jewelry. We import and then polish and then we send out, just for example, which is a large scale employment opportunity. Now the challenges there were threefold. The first one was it took inordinate time to clear your goods from customs.
1: Yes.
3: And the processes were cumbersome. The second thing was it took a lot of time to get from your factory to the shipping location because of logistics.
1: Yes.
3: And the third was that when you exported, you didn't have access to credit and there was no guarantee for the export. Mm. Now, all these three issues have been actually addressed by the government in the ease of doing business.
1: Mm.
3: And particularly the first is you have computerized the customs forms. Second, you've increased the turnaround, decreased the turnaround time, which was like 14 days, 21 days, to less than 7 days of cargo vehicles in some ports. Again, number of ports has been increasing. And the third, you've digitized most of the processes where you don't have to be physically present and you can do this online. And interestingly, and this is very interesting for your listeners to actually understand, if you don't clear your goods or you don't pay on time, there's a penalty on you. So you're actually putting the onus on the businessman to help in this going forward. So, you know, that is the customs thing. And there's been a lot of streamlining of the customs thing and more is in store going forward. There were multiple chapter heads. There were multiple things here. There's a rationalizing going in. And a lot of what has been done in income tax space will be done in the customs space. The second thing was logistics. You know, if you took the textile industry for one, and it's a 4 or 5 season kind of a thing, and you had to ship between India and let's say your main market, if it was the US, within certain number of days. Now, if more than 50% of those days were taken up in logistics, then you faced a disadvantage. And with the PM Gati Shakti and everything happening here, they looked at a very simple thing. Where are the manufacturing clusters? Where are the export destinations? And where is the logistic required? And started addressing them in a very systematic way.
1: Yes.
3: And then they put it online. They made it digital so you could actually follow. Private sector also has played a way. You know, we tend to think that maybe companies who do delivery, right, are possibly using gig workers, etc. But they've contributed to this because they can track shipments. Private guys, you know, even now the India Post, if it sends you anything, you can track it going forward and you know when it is going. So the whole, and like Mr. Sharma mentioned, that 14%, it has come down to single digits now and you'll see further going forward. So that is the PM Gati Shakti, you know, impact here. And the digitization impact is much, much, much, much larger because, you know, you can do everything digitally going forward.
1: Yes.
3: But there's a very interesting statistic that I like to say. Over the last few years, there was always a kind of a complaint, right, that private sector was not investing. You know, it is all led by government. And you know, if you look at the last few months, and given the fact that we had tariffs against us, uncertainty of tariffs still looms. There is the war situation, twin war situation. Both the wars impact us hugely. For the first time, you're seeing green shoots of private sector investment coming in because private sector capacity utilization is around 74-75% and a lot of new projects are coming up. And the other interesting part is, given the digitization, you know, whether it is GST, Udyam registration, the GEM, the ONDC, or the PM Swanidhi, or let's not forget the ENAM network.
1: Yes.
3: It has got millions of entrepreneurs that were previously invisible to the system. Got them online, got them formalized, and got them access to credit and visibility to the external market.
1: And also, there's been a lot of stress on inclusivity. If we see the Mudra scheme, you know, the women are, I being a lady, you know, I feel that, I mean, there's a lot of stress that has been given on developing women as business entrepreneurs. And a lot of encouragement has been given to new entrepreneurs. So you feel that this is an era where anybody who has the talent has now the opportunity, has been enabled to become a part of nation building?
3: I think absolutely. If there are any listeners who want to start a business, women or men, there are a lot of specific projects. And, you know, if you look at the year before last budget, right, one of the things was 75% women in economic activity. You know, that's his goal of what does Viksit Bharat mean, right?
1: Yes.
3: And we want to become entrepreneurial. So this is the best time for any young person or even a person who is
1: any age group
3: yes. to actually explore setting up a business. The domestic ecosystem to promote entrepreneurship has never been better. Some people may say some more changes are going to have required, but this is always work in progress. And the interesting part of this whole system is that the government is willing to listen to what changes need to be made. If you give a suggestion, It is looked at, may be accepted, but the whole idea here is ease of doing business and ease of living.
1: Absolutely. In fact, we are totally running out of time. Would you like to say something, Dr. Sharma?
2: Yes, Sonuji, I would like to mention one more promising area, which is the artificial intelligence, which is promoting and supporting the business's trajectory and making them more and more easier. अगर आप देखें तो जो हम पहले बहुत बैकवर्ड माने जाते थे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में अभी हम सबसे आगे हैं. हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम.
1: तो ये एक ब्रेकथ्रू मेजरली टू
2: यस जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है. अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कंपेटिटिव इन द नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम.
1: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चनोय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
3: थैंक यू.
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
4: यूम ने की वस्ती कश्मीर के बड़गाम और गांधरबल अजला में भी योगा सेशंस मुनक्कद हुए जिनकी कयादत इन अजला के डिप्टी कमिश्नरों अधर आमिर खान और जतिन किशोर ने की. शुमाली कश्मीर में योगा डे के सिलसिले में जोश खरोश देखा गया. बारामुल्ला के शौकत अली स्टेडियम में शुमाली कश्मीर के DIG पुलिस डॉक्टर विनोद कुमार की सरबराही में योगा डे की तकरीब मुनक्कद हुई. इसमें जिले के डिप्टी कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद भी शरीक रहे. कोपवाड़ा के गालीजू स्टेडियम में मुनक्कद तकरीब की कयादत डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सूसे ने की. बांडीपोरा के इसके स्टेडियम में योगा डे की मुनासिबत से मुनक्कद सेशन की सरबराही जिले के SSP एजाज अहमद जरगर ने की. अजला की सतह पर मुनक्कद हुए इन प्रोग्रामों में इंतजामिया के अफसरों, स्कूली बच्चों और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की. जम्मू के सभी 10 अजला

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समीन, पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में कलदम करार दी गई तंजीम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान होने वाली झड़पों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह तादाद कहीं ज्यादा है। समीन, हुकूमत मुखालिफ ये तहरीक माशी मसाइल के हल और हुकूमती निज़ाम में इस्लाहत का मुतालबा कर रही है। गुज़श्त हफ्ते ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के तहत कलदम करार दिए जाने के बावजूद इसके हामी एहतजाज जारी रखे हुए हैं। समीन, एदाद शुमार के मुताबिक इब्तदाई तौर झड़पों में 7 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 3 शहरी और 4 पुलिस अहलकार शामिल थे, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। ताहम ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक हलाकतों की मजमू तादाद बढ़कर 20 तक जा पहुंची है। समीन, मुजफ्फराबाद में इस हफ्ते मुतद्दिद दुकानें अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की अपील के हक में बंद रहीं, जबकि इलाके में मोबाइल नेटवर्क सर्विस भी शदीद मुतासिर रही। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने तंजीम को दहशतगर्द करार दिए जाने के हुकूमती फैसले को जुल्म करार देते हुए कहा कि उनकी जद्दोजहद जायज माशी और सियासी हकूक के हसूल के लिए है। वाज़ह रहे कि गुज़श्त बरस सितंबर में भी इस तंजीम की क़यादत में होने वाले एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कई रोज तक पुरतशद्दुद झड़पें जारी रहीं, जिनमें तस्दीक शुदा इतलात के मुताबिक 9 अफराद हलाक हुए थे। समीन, रावलाकोट की तरफ जाने वाले रास्तों की बंदिश की वजह से शहर में आटे का बहरान पैदा हो गया है और लोग पैदल और दूसरे रास्तों से खाने पीने की आशा लाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानी वहां जिला इंतजामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी, जिसमें दुकानदारों और ताजरों से कहा गया है कि वो आवाम की सहूलत और खिदमत के लिए दुकानें खुली रखें, बसूरत दीगर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समीन, अवामी एक्शन कमेटी दावा कर रही है कि उन हलकों को हुकूमत पाकिस्तान एक टूल के तौर इस्तेमाल करती है और उन हलकों के मेंबरान को अदम इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन हलकाजात को फौरी खत्म किया जाए और वो महाजरीन जो खित्ते के अंदर रिहाइश पजीर हैं उन्हें ही असम्बली में नुमाइंदगी दी जाए। ताहम मौजूदा हुकूमत का कहना है कि सीटों का खात्मा आईनी तरमीम ही के जरिए मुमकिन है, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और ये कि अब ये काम आइंदा मुंतखब होने वाली असेंबली ही कर सकती है। समीन, प्रोग्राम में और भी कुछ आया चाहता है, आप हमारे साथ बने रहिए और ये गजल सुनिए।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। गुर्बत इंसानी वसाइल की सरमाया अंदोजी के अमल में रुकावट डालती है, क्योंकि गुर्बत की वजह से आम लोगों को तालीम और अच्छी खजा तक रसाई हासिल नहीं होती, जो कि उनके महारतों को चमकाने के लिए नहायत जरूरी है। नतीजतन गुर्बा के लिए मैशियत के बारे में जरूरी मालूमात का हसूल और अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। मुबसरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में मुबतला अफराद की तादाद हुकूमती आदाद शुमार से कहीं ज्यादा है। मिसाल के तौर पर हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 2025 में गुर्बत की शरह 22.3% थी और 2007-2008 में कम होकर 17.5% रह गई थी, जबकि 2008-09 में 73% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे। इसी तरह पिछले सालों में भी गुर्बत की शरह घटाकर पेश की जाती रही। आलमी बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 51% है। महदूद वसाइल, आबादी में तेज रफ्तार इजाफा, जहालत नाखानदगी और इंसानी वसाइल में टेक्नोलॉजी और इंतजामी सलाहियतों के फुकदान और नाअहली ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से गुर्बत में वहां मुसलसल इजाफा हो रहा है। एनर्जी के बहरान, सियासी अदम इस्तेकाम और दहशतगर्दी की वजह से टेक्सटाइल मिलों और दीगर अहम सन्नतों की बंदी से वहां बेरोजगारी बुलंद शरह से बढ़ रही है, जिससे गुर्बत में मजीद इजाफा हो रहा है। यूटिलिटी बिलों में बड़े इजाफे और खैर मुनसिफाना और जाबराना टैक्स निजाम की वजह से गरीब और अमीर के दरमियान वहाँ काफी खलीज पाया जाता है और आम आदमी के लिए कई एक माशी और समाजी मसाइल वहाँ पैदा हो रहे हैं। शहरी इलाकों की निस्बत देही इलाकों में गुर्बत की शरह बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% गुर्बा देहात में रहते हैं, जिन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं है। दही मैशत का ज़िराद पर भारी इन्हिसार है और तकरीबन 66% अफराद का जरिए माश ज़िराद है। चूंकि ज़िराद दही आवाम की आमदनी का बड़ा जरिया है, ज़िराद की तरक्की गुर्बत कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 10 मिलियन से ज्यादा अफराद गुर्बत की दलदल में फंस चुके हैं। इस इदारे ने गुर्बत की मुख्तलिफ जहतों का एक इंडेक्स तैयार किया है, जिसमें तालीम, सेहत, बिजली, खाना पकाने के ईंधन वगैरह को शामिल किया है। इस इंडेक्स में गुर्बा की तादाद के अलावा गुर्बत की शिद्दत का भी अंदाजा लगाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तालीम से महरूम लोगों की तादाद 20% से ज्यादा है, जो कभी स्कूल नहीं गए। गजाइत के बारे में सही आदाद शुमार दस्तियाब नहीं। बच्चों की शराबवाद 30% है। जहां तक मयारी जिंदगी का ताल्लुक है, 10% लोग बिजली की सहूलत के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। 33.3% को सेहत की सहूलतें मयसर नहीं। 8% को पीने का खालिस पानी दस्तियाब नहीं। 41% खाना पकाने के ईंधन के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते और 26% के पास किसी किस्म का कोई असासा नहीं है। समीन, इस रिपोर्ट में गुर्बा की मोहताजी की सतह का भी जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 34.3% आबादी की मोहताजी की सतह 40% है। समीन, पाकिस्तान में गुर्बत के फैलाव का सही अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है कि महज आमदनी और सर्फ की कमी के अलावा इंसानी मोहताजी के दीगर अहम पहलुओं का भी जायजा लिया जाए, जिनका आवाम को हर रोज सामना करना पड़ता है। समीन, ये थी चंद बातें पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से। अब प्रोग्राम के आखिर पर ये नगमा सुनिए।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने अख्ताम को पहुंचता है। मेजबान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए। खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

ये आकाशवाणी बदरवा है, FM 101 MHz पर। सामीन रात के ठीक 8:27 हुए हैं। अब समाप्त कीजिए पंजाबी मौसीकी आगाज़ में, आइए सुनते हैं जैस मानक की आवाज़ में लोकगीत।

आकाशवाणी बदरवा है एफ एम 101 MHz पर। समय थोड़ी देर में 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज़ 8 और रात 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर

0: और अग्रिय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया

0: कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, सबके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating host New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. With this, Indian team also secured entry to the FIH Women's Pro League. The team produced a stellar defensive display to protect the lead provided by Navneet Kaur and Sunilita Topper. Today's win also marked the return to the Pro League next season. Lalrim Siami was awarded the player of the match, while Deepika finished as the joint top scorer with 6 goals to her name. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised them for their exceptional performance throughout the tournament. Hockey India has announced a cash award of 3 lakh rupees for each player and 1.5 lakh rupees for each member of the support staff. In cricket, India A defeated host Sri Lanka by 66 runs in the summit clash of the Tri-Nation A series in Dambulla today. Put into bat, India A posted 377 runs for the loss of 9 wickets in the stipulated 50 overs. Indian teenage sensation Vaibhav Suryavanshi smashed a half century in just 11 balls before striking 94 in just 29 balls. In reply, Sri Lanka were bowled out for 311 in 47.1 overs. And in women's cricket, India were 19 for no loss in 4 overs against South Africa in a Group A match of the ICC T20 World Cup in Manchester when reports last came in. India won the toss and opted to bat first. This match marked a major milestone for captain Harmanpreet Kaur, who became the first cricketer, male or female, to play 200 T20 internationals. The 19th Mumbai International Film Festival 2026 concluded today, bringing down the curtains on a 7-day celebration of non-fiction cinema. The closing ceremony was held at Mumbai's Ravindra Natya Mandir in the presence of Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma, Additional Secretary in the Ministry of Information and Broadcasting, Prabhat, and other dignitaries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts strong maritime capabilities key to country's economic and strategic influence, commissions 3 indigenous naval warships in Kolkata. NEET re-examination for admission to undergraduate medical courses conducted amid tight security arrangements. In Tamil Nadu, 7 people killed and over 70 affected in ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam. US-Iran talks underway in Switzerland to strengthen the interim government and consolidate efforts to end the West Asia conflict. IMD forecasts extremely heavy rainfall in Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim and sub-Himalayan West Bengal till Saturday. Indian women hockey team lifts FIH Nations Cup, defeating host New Zealand 2-0 in final. And in cricket, India lift the Tri-Nation A series, beating host Sri Lanka by 66 runs in the final. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क के इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक असरो रसूख के लिए निहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक्किद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तनाजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर एफआईएच नेशंस कप जीत लिया है। और क्रिकेट में भारत ने फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर 3 मुल्कों की ए सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जदीद दुनिया में समुद्री ताकत की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें किसी भी मुल्क की इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक असर रसूख का फैसला कुन उंसुर होती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हकीकत को बखूबी समझता है और इसी के मुताबिक वो अपनी तैयारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर मुल्क में ही डिजाइन और तैयार करदा भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाजों को पानी में उतारा। इनमें जदीद स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, अहम सर्वे जहाज INS संशोधक और आबदोज शिकन जंगी सलाहियत से लैस कम गहरे पानी का जहाज INS अग्र शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन जहाजों की तैयारी में 200 से ज्यादा MSMEs ने हिस्सा लिया, जिससे मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा हुए और माशी सरगर्मियों को फरोग मिला।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
1: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट UG 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनाकिद किया गया। इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरून मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। NTA ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इम्तिहानात के तमाम मराकिस पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, CCTV निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से 2 सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। CCTV निगरानी के लिए NTA हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमा डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: CBSE ने 12वीं जमात के तस्दीक और दोबारा जांच के नतीजे मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से ज्यादा नतीजे का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतीजे भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताजा मालूमात के लिए सिर्फ CBSE के सरकारी जराए और डिजी लॉकर से ही राब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हिलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स NDRF और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला सी जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधा कृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासिरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। योग का बैन अवी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। इसकी मरकजी तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मुनद हुई। वजीर आजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शौरका के साथ योग किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: इस साल के योग के बैन अल-अक़वामी दिन के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न ही ये उम्र के किसी तबके तक महदूद है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का जश्न है और इसने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बाबानी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत 2026 की ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत इस महीने की 25 और 26 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। मीटिंग में तीन अहम तरजीहात, तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक मसावी रसाई, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा और सीनियर हुकाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे ताकि तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारी और जिद्दत तराजी के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग भारत को आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने और एक जामे आलमी तवानाई मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रोल अदा करने का मौका फराहम करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदा इस साल के दिसंबर तक होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के अगले बरस फरवरी और मार्च के दरमियान नाफिज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय कारोबारियों को यूरोपीय बाजार तक तकरीबन सिफर दरामदी ड्यूटी के साथ रसाई हासिल होगी। मगरबी एशिया तनाजे को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अबूरी माहदे को मजबूत बनाने की खातिर आज स्विट्जरलैंड के बर्गिन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात शुरू हो गए। अमरीकी वफद की क्यादत अमरीकी नायब सदर जे डी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद की क्यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराकची कर रहे हैं। इस मुजाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के जारी रहने के बायस दोबारा आबनए हुरमुज को बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह अब भी तमाम बहरी जहाजों के लिए खुली हुई है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका, कतर और पाकिस्तान के साथ मुजवजा चार फरीकी मुश्तरका मुजाकरात से कबल बातचीत करने वाली टीम ने बर्गिन स्टॉक में कतर के सालसों के साथ बातचीत की। चार फरीकी मुजाकरात से पहले अमरीकी वक्त ने भी पाकिस्तान की सालसी टीम से मुलाकात की। गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात आईएमडी ने इस महीने की 27 तारीख को आसाम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और सिक्किम में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। आईएमडी ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने एफआईएच खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया। اور خواتین کی پرو لیگ میں اپنی جگہ یقینی بنا لی. نونیت کور اور سنیلیتا ٹوپو نے بھارت کی طرف سے گول کیا. پورے ٹورنامنٹ میں بھارت ناقابل شکست رہا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ جیت نوجوان کھلاڑیوں کو ہاکی کو اپنانے کی ترغیب دے گی. کرکٹ میں سری لنکا کے دامبولا میں تین ملکوں کی سیریز میں آج بھارت اے نے میزبان سری لنکا کو 66 رن سے شکست دی. بھارت اے نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹ پر 377 رن بنائے. بھارت اے نے پہلی وکٹ کی شراکت داری میں شاندار 130 رن بنائے. بیبھو سوریہ ونشی نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 11 گیندوں میں ہاف سینچری بنائی اور صرف 29 گیندوں میں 94 رن بنائے. سری لنکا اے کے لیے کوگا تھاس میتھولن، رویندر فرنانڈو اور ونوجا سہان نے دو دو وکٹ حاصل کیے. جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 47 اوورز ایک گیند میں 311 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. دولت مشترکہ کھیلوں کے لیے منتخب بھارتی مکے بازوں نے چیک جمہوریہ کے استی ناد لابہم شہر میں منعقدہ 56ویں گراں پری میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12 تمغے حاصل کیے جن میں سونے کے 8 تمغے شامل ہیں. 5 رکنی خواتین ٹیم نے سونے کے 4 اور چاندی کا ایک تمغہ جیتا ہے. اس میں لولینا بورگوہین، پریتی پوار، ساکشی چودھری اور پریا گھنگاس نے سونے کا تمغہ حاصل کیا جبکہ پروین ہڈا نے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا. ایشین ریلے چیمپئن شپ میں چین کے شاوک سنگ شہر میں منعقدہ ٹورنامنٹ کے دوسرے ایڈیشن کے آخری دن بھارت نے خواتین کی 4x100 میٹر دوڑ میں سونے کا تمغہ حاصل کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ مضبوط بحری صلاحیتیں ملک کی اقتصادی اور اسٹریٹجک اثر و رسوخ کے لیے نہایت اہم ہیں. انہوں نے کولکاتہ میں ملک میں ہی تیار کیے گئے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارا. انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ کا دوبارہ امتحان آج سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان منعقد کیا گیا. تمل ناڈو کے پیریا پلائم میں سمندری خوراک فراہم کرنے والی ایک کمپنی میں امونیا گیس کے اخراج کے باعث 7 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے. امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات جاری ہیں جس کا مقصد عبوری معاہدے کو مضبوط بنانا اور مغربی ایشیا کے تنازعے کے خاتمے کی کوششوں کو مستحکم کرنا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، سکم اور مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیہ خطے میں ہفتے تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. بھارتی خواتین ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان نیوزی لینڈ کو 0 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر ایف آئی ایچ نیشنز کپ جیت لیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلیٹن ختم ہوا.
4: یہ آکاشوانی بھدرواہ ہے ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر. سمین رات کے ٹھیک 9:30 ہوئے ہیں. اب سماعت کیجیے پرانے فلمی نغمے. آغاز میں آئیے سنتے ہیں انارکلی فلم سے نغمہ. نغمہ نگار ہے راجندر کرشن، موسیقار ہے سی رام چندر اور اس نغمے کو گایا ہے ہیمنت کمار لتا منگیشکر نے.

0: समीर पेश है 20 साल बाद फिल्म से नगमा, आवाज है हेमंत कुमार की।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

सामीन, प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं फिल्म लव इन टोक्यो से नगमा। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, मौसिकार हैं शंकर जयकिशन, और इस नगमे को गाया है लता मंगेशकर ने।

अभी आप समाप्त कर रहे थे पुराने फिल्मी नगमे। ये आकाशवाणी भद्रवाह FM 101 MHz पर समीन रात के ठीक 10 बजे हैं। अब हमारी आज की नशरियात यहीं पर मुकम्मल हुआ चाहती है। कल की नशरियात में इंशाल्लाह सुबह 7:51 पर इन्हीं मीटर्स यानी FM 101 MHz पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।